2.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ना।

सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इं बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

92.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोताओ तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पंगे।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।

0: ऑफर कैसे रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: एक सेकंड यार।

0: ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
1: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
0: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
2: एक्सक्यूज मी सर,
0: क्या हुआ?
1: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
0: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
1: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
0: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
1: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
0: श्योर
1: श्योर।
3: चलो बेबी चाय।
4: थैंक यू।
3: आपने आज की न्यूज सुनी?
4: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
3: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
5: ओह नो।
4: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
3: और क्या।
6: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: नहीं,
0: ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा बच जाओ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बी ए एम ए की डिग्रिया है सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

उस जीवन का एक भी अवसर जो हमें मिलता है इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में धैर्य और मुस्कान नहीं छोड़ी, वैसे ही आप भी कठिनाइयों में साहस और विश्वास कभी मत छोड़िए। कर्म कीजिए पूरे समर्पण से, फल की चिंता उन्हें सौंप दीजिए जो आपके हित में सर्वश्रेष्ठ जानते हैं। अपने मन को श्रेष्ठ बनाइए, विचारों को पवित्र बनाइए, यही आपकी सफलता और शांति को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ सदैव रहता है। उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आपसे औरों का जीवन भी रोशन हो जाए। यही है सच्ची भक्ति, यही है जीवन की सच्ची सफलता। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इन बहुत ही प्यारे से शब्दों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी ने कर ली है। जी दोस्तों, जैसे आप सभी की आज की सुबह की शुरुआत हुई है, उसी तरह से हमारे इस प्यारे से गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो स्वागत है आप सभी का अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ इस प्यारे से सफर में। जी दोस्तों, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही यादगार बनने वाला है। तो आज 19 मई 2026 का दिन, मंगलवार का दिन, डेली रूटीन के साथ जरूर एंजॉय कीजिए। हर एक पल, हर एक अवसर बहुत कीमती होता है हमारी जिंदगी में, बहुत बहुमूल्य होता है, तो इसे जाया मत जाने दीजिए। जी दोस्तों, ढेर सारी बातें होने वाली हैं, ढेर सारी मस्ती होने वाली है, मनोरंजन होने वाला है। तो आइए मनोरंजन की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन ये सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और मेरी तो हर बात आप सभी तक है और आपकी होप मुझ तक है कि प्यारे प्यारे से गीत और कुछ खास खास सी जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचेंगी इस प्यारे से बहुत ही खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से।

नमस्ते दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब रुक करते हैं मौसम की ओर, जानते हैं मौसम की अपडेट, मौसम का हाल। तो आंखों देखा हाल धर्मशाला का तो आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही तेज सी तीखी सी धूप जो है वो खिली हुई है और 9 बजे का समय, क्या 8 बजे का समय की ही हम बात करें तो एकदम से बाहर निकलना मुश्किल है धूप में, मतलब इतनी तेज धूप जो है वो है इस समय। और अगर हम तापमान की बात करें ना दोस्तों, तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस समय का तापमान आप सभी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों निचले क्षेत्रों के साथ पहाड़ भी तपने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सच बात है। शिमला सहित सभी जिलों में गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। देखिए 2 ही दिन हुए हैं अभी धूप को इस तरह से लगे और गर्मी से परेशान हो गए। बस यही है मौसम, हमें कहीं भी पसंद नहीं आता है, हम इंसान कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेते हैं, पर क्या करें, इंसानों की जिंदगी है और इसी तरह से चलती है। दोस्तों मौसम में आए बदलाव से मैदानी जिलों के साथ पहाड़ों में भी पसीना छूट रहा है। अधिकतम तापमान में हुई बढ़ोतरी के साथ अब रात का पारा भी चढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 से 24 मई के दौरान राज्य के कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। जी दोस्तों, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा जहां बारिश से अलर्ट रहता है वहीं धूप से भी अलर्ट रहता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में बाहर निकलना हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, क्योंकि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती है। कईयों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो कई बार क्या होता है जब हम धूप में निकलते हैं तो वो तेज़ धूप भी उन्हें जो है मुश्किलें पैदा कर देती हैं। तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो हम छाता ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचना सबसे पहले रखना है। जी दोस्तों, सबसे पहले अपनी हेल्थ को ध्यान में रखिए, दुनिया का काम है सोचना कहना, उन्हें अपने हिसाब से कहने दीजिए, सुनिए ज़रूर लेकिन करिए वही जो आपका मन चाहता है, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं। दुनिया के हिसाब से अगर आप चलने लगे तो जिंदगी न जाने कहां से कहां ले जाएगी। फिलहाल रुचिका के हिसाब से इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में आप सभी चले हुए हैं इस सफर में, तो आइए बढ़ते हैं इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में आगे। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत मस्ती भरा आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो वंचन धर्मशाला से। और इसी गीत के साथ अब समय हो गया है अपने आसपास की कुछ खास जानकारियां जानने का, यानी कि प्रादेशिक समाचारों का। जी दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं, तो मिलते हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ। अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने को हैं, लेकिन इस छोटे से खास ब्रेक के बाद।
1: आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा अपनी अपनी जीत के कर रहे दावे। प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए लिया अहम फैसला। 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए हो रही कारगर साबित। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में आज लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। मतदान 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: मंडी जिला के शहरी निकाय चुनावों में इस बार हिमाचल की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मंडी में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा झटका भाजपा को नेरचौक में लगा, जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 9 में से 8 वार्ड अपने नाम किए। वहीं सुंदरनगर में भाजपा ने जोरदार वापसी करते हुए 9 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। जिले के 6 शहरी निकायों में कुल 48 वार्डों में कांग्रेस समर्थित 23, भाजपा समर्थित 19 और 6 निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। करसोग और रिवालसर में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई, जबकि जोगिंदरनगर और सुंदरनगर में भाजपा पक्ष में रहे। अब नजर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों पर है, जहां निर्दलीय पार्षद सत्ता की चाबी बन सकते हैं। उधर पूरे प्रदेश की नजरें अब 31 मई को आने वाले नगर निगम चुनाव परिणामों पर टिक गई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश दफ्तर आने जाने के लिए कारपूलिंग करेंगे और इसके साथ ही 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी कारपूलिंग करेंगे, यानी एक ही गाड़ी में कई न्यायाधीश दफ्तर आएंगे ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। साथ ही हाई कोर्ट के 50% कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम 2 दिन घर से काम करने की सुविधा दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आधिकारिक सर्कुलर भी जारी किया गया है। सर्कुलर के अनुसार बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। इसके तहत रजिस्ट्री की प्रत्येक शाखा या सेक्शन का 50% स्टाफ हफ्ते में अधिकतम 2 दिन घर से काम करेगा। कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए बाकी का 50% स्टाफ ऑफिस में मौजूद रहेगा। रजिस्ट्रार को सप्ताह शुरू होने से पहले साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी सरकारी स्कूलों को हर कक्षा में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा वार्षिक परिणामों में सुधार करना है। जिन विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति न्यूनतम 75% नहीं होगी, उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाएं और उनके अभिभावकों को समय रहते चेतावनी भेजे। आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में मंडी जिला के माघेल गांव के रहने वाले एक बेहद गरीब मरीज नेता सिंह के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं रही। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी।
4: आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए अस्पताल का खर्च उठाना संभव नहीं था। ऐसे में जोनल अस्पताल मंडी में आयुष्मान मित्र ने उनका गोल्डन कार्ड बनाया, जिसके बाद उनका ऑपरेशन, दवाइयां और पूरा इलाज मुफ्त में किया गया। नेत्र सिंह अचानक हर्निया की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी। मंडी जिले में अब तक 85% से ज्यादा परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और जिले के 14 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग अब आयुष्मान आपके द्वार अभियान के तहत दूर दराज क्षेत्रों में भी लोगों के कार्ड बना रहा है, ताकि हर जरूरतमंद तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सरूपमा शर्मा।
1: भाजपा ने पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भाजपा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन चुनावों के लिए गठित अनुशासन समिति को नालागढ़ पंजेहरा मंडल से जिला परिषद चुनाव में किसान मोर्चा जिला महामंत्री ज्ञान ठाकुर द्वारा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने तथा किसान मोर्चा जिला प्रवक्ता अमित राणा के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत प्राप्त हुई थी। भाजपा ने इन दोनों नेताओं को पार्टी 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अनुशासन समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि और पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कल रोपवे एवं तीव्र परिवहन विकास निगम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नड्डी जीपलाइन परियोजना की प्रगति एवं विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा परियोजना से संबंधित वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। पठानिया ने उपायुक्त कांगड़ा को NAC प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक NOC शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए। कहा कि नदी जिपलाइन परियोजना में साहसिक पर्यटन को नई पहचान प्रदान करेगी और इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजधानी शिमला से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में मैदानी इलाकों सहित पहाड़ों पर भी तपिश बढ़ने लगी है। राज्यों के कई क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर में आज लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश होने की संभावना जताई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, 9 शहरी निकायों में निर्दलीय तय करेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी, टिकी निगाहें। दैनिक भास्कर ने निर्विरोध चुनी गई 131 पंचायतों को राज्य सरकार देगी 25-25 लाख रुपए। दैनिक जागरण के अनुसार कुनिहार में 2 बैलेट पेपर गायब, ARO सहित 8 कर्मी चुनाव ड्यूटी से हटाए, आपदा में मौत पर मिलेंगे 10 लाख। शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, केंद्र सरकार बदलने जारी राहत नियमावली। मौसम से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है, शिमला में सीजन का सबसे गर्म दिन, ऊना में पारा 39.7 डिग्री। हिमाचल दस्तक के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों में जीत की हासिल। दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल बनेगा देश का पहला पोषण नीति वाला राज्य, 31 मई तक नीति तैयार करने के निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज, 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस व भाजपा अपनी अपनी जीत के कर रहे दावे। प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन और सरकारी खर्च बचाने के लिए लिया अहम फैसला, 50% कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए हो रही कारगर साबित। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ, मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में आज लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

तो इस छोटे से अंतराल और समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के ढेर सारी बातों के साथ। जी दोस्तों, हर कार्यक्रम में आप सभी के लिए कुछ बहुत ही खास जानकारियां रहती हैं और जो बातचीत रहती है वो भी हमारी जिंदगी से जुड़ी खास होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सबक मिल सके और जाने अनजाने में भी अगर हम कहीं भटक रहे हैं तो ये बातें हमें भटकने से रोक सकें। उम्मीद रहती है दोस्तों, खास करके रुचिका की। और बाकी तो खैर आप सभी बहुत ही समझदार हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है ये आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस धोखाधड़ी

गहरा बना देता है कि फिर छोटी छोटी खुशियां भी अनमोल लगने लगती हैं। कई बार आदमी दौलत कमाते कमाते अपनी हंसी खो देता है, और जब दर्द उसे आईना दिखाता है तब समझ आता है कि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा ज्यादा है, बल्कि सबसे अमीर तो वो है जिसके दिल में सुकून बाकी है। है ना दोस्तों, कुछ खास बातें जो कि हमारी जिंदगी की रियलिटी से जुड़ी हैं, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से अनजान हैं। तो ये समझना सोचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हेल्थ की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस दौलत को कमाते कमाते हम अपनी हेल्थ भी खो देते हैं, तो उस पर भी हम ज़रूर जानेंगे दोस्तों। क्योंकि आजकल के समय में आप देखेंगे तो बच्चों को ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो घेर रही हैं, तो उसी के बारे में आज थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कमी है, कौन सी कमी कहाँ रह रही है, और कौन सी बीमारी जो है आज के समय में ज़्यादातर हम सभी को घेर रही है, तो जरूर। लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

तेरे प्यार में मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत कमल खान नीति मोहन की आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका ने। जी दोस्तों, इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ आप सभी अपनी डेली की रूटीन जो है एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ एंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे से सफर को। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि आज के समय में युवाओं की हम बात करें तो छोटी सी उम्र में न जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां वो फेस कर रहे हैं। तो आखिर क्या रीजंस हैं, क्योंकि आज के समय में तो कोई ऐसी कमी बच्चों को मिलती नहीं है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो हर एक ज़रूरत का ध्यान वो रखते हैं, चाहे खैर पेरेंट्स खुद दिक्कत में परेशानी में रह लेंगे लेकिन बच्चों को कोई कमी नहीं रहने देते। तो फिर भी क्यों ये बीमारियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, ये रीज़न जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, भारतीयों में हृदय रोग होने के आनुवंशिक प्रवृत्ति अधिक होती है। हमारे देश में युवाओं के लाइफस्टाइल में हो रहे बदलाव से टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। लोग अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं है। इसके कारण युवाओं में ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। जी दोस्तों, ये बीमारी तो आम हमारे आसपास जब भी हम सुनते हैं तो किसी को साइलेंट अटैक आ गया, किसी को पता नहीं बैठे बैठे ही ऐसे क्या हो गया क्या ना हुआ कोई पता नहीं चलता। तभी तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा है। लेकिन इसके पीछे रीजंस के बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ यही कहते कि शायद यहीं तक था सफ़र, कोई ना कोई बहाना लगना होता है और बस ज़िंदगी ख़त्म। और कुछ लोग तो मजाक मजाक में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। जो बेचारे जीना चाहते हैं उनके पास ज़िंदगी का समय नहीं है, और जिनके पास समय है वो भी अपनी ज़िंदगी को हाथों से गवा रहे हैं। तो ये जो है ना, हमारी ज़िंदगी का एक बैलेंस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। तो ये जो हमारा बदलता लाइफ स्टाइल है, शायद उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि ये छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं, बच्चे हो, युवा हो, कोई भी हो। तो इसकी तह तक जाना और अपनी जिंदगी में नजर डालना, इस गहराई को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि समय रहते अगर चीजों को संभाल लिया जाए तो शायद आने वाले समय में चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन हम जो ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, अपने रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे अपने हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो ज़रूर इस पे विचार कीजिए, बात ज़रूर करेंगे हम कि क्या क्या इसमें ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए या कौन से कारण हैं जो हमें पता लगने चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

फिर मिलेंगे फिल्म का ये प्यारा सा गीत शंकर महादेवन के आवाज के साथ। आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

तो आइए दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और अब आप सभी को लेकर चलते हैं अपनी बातचीत से थोड़ा सा खास जानकारियों की ओर, क्योंकि जिंदगी से जुड़ी बातें तो कभी खत्म होने से रही और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं बातों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत से सबक लेते हैं, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन उसी के साथ जो है आगे बढ़ने के लिए कुछ खास जानकारियाँ कि आखिर हमारे आसपास चल क्या रहा है, क्या होने वाला है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये खास जानकारी। अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा विक्री तथा ई फार्मेसी के बढ़ते चलन के खिलाफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने 20 मई को देश भर में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है, यानी कि कल। जी दोस्तों, ऑनलाइन फार्मेसियों की अनियंत्रित संचालन और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा दवाओं पर दी जा रही भारी छूट के खिलाफ देश के लगभग 12 लाख से अधिक केमिस्ट और वितरक सड़कों पर उतरेंगे। इस देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के दवा विक्रेताओं ने भी अपनी दुकानें पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। हड़ताल के दौरान स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और देश के लाखों छोटे दवा व्यापारियों के वजूद को बचाने के लिए केंद्र सरकार से तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की जाएगी। जी दोस्तों, तो कल जो है प्रदेश भर में बंद रहेंगी दवा दुकानें हड़ताल के चलते। जी दोस्तों, राज्य के केमिस्ट भी ऑनलाइन दवा विक्री के खिलाफ करेंगे हड़ताल। तो आप सभी के लिए बहुत खास जानकारी है, जो भी दवाई लेने के लिए अगर जाएंगे तो कल दुकानें जो है दवा के लिए वो बंद रहेंगी। वैसे तो हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हेल्थ का ध्यान अगर हम प्रॉपर रखेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इमरजेंसी में पड़ ही जाती है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान और सतर्कता हमारे लिए बेहद खास है, और ये खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा कार्यक्रम का गीत।

दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, क्योंकि अभी ढेर सारी बातें और ढेर सारा मनोरंजन आप सभी का इंतजार आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट के माध्यम से कर रहा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, फटाफट से बस काम के लिए तो आपको वैसे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको कौन सा टीवी की तरह इसको देखने के लिए बैठना पड़ेगा। आप बस साइड में रख दीजिए और अपने काम भी एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की इन ढेर सारी बातों और जानकारियों को भी एंजॉय कीजिए। तो फिलहाल लेते हैं ये छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ।

तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कहते हैं कि गुस्सा जो है ना हमारी जिंदगी में एक आतंक फैला देता है, सारी चीजें उथल पुथल कर देता है। तो गुस्से का सबसे कड़वा सच जानते हैं क्या है? दोस्तों भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इंसान की बर्बादी का पूरा रास्ता सिर्फ एक ही श्लोक में बता दिया है। उनका कहना है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है तो इंसान विनाश के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। क्या मानते हैं आप सभी इस बात को? जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको सही और गलत का फर्क दिखना कुछ हद तक बंद हो जाता है। आप वो फैसले लेते हैं जिनकी सबसे भारी कीमत बाद में आपको ही चुकानी पड़ती है। तो ये है गुस्से का असली सच, पर कड़वा सा है। लेकिन सच तो सच है, सच्चाई का रास्ता हमेशा कड़वा होता है, मुश्किल होता है, चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन एक सुकून से भरा भी होता है। हम सिर्फ उसके बुरे पहलुओं को देखते हैं, लेकिन हर इंसान में बुराई ही नहीं होती, कुछ अच्छी बातें भी होंगी। उन अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए और किसी इंसान को डीमोटिवेट करने से पहले उन अच्छी बातों से उसे थोड़ा सा हौसला दीजिए, उसे मजबूत बनाइए। इंसान होने के नाते इंसानियत निभाइए। क्यों अपनी जिंदगी को गलत कर्मों से भरने में लगे हुए हैं? फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

दोस्तों जिस तरह आज दिखावे का चलन बढ़ा है तो युवा भी बाहर से भले ही फिट दिखते हैं लेकिन अंदर से ज्यादा बीमार हैं। जैसे जिम तो जाते हैं लेकिन स्टेरॉइड जो है वो नहीं लेते या लेते हैं, इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी

में कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के जुनून में बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं। दूसरी तरफ वर्क प्रेशर है, भाग दौड़ भरी दिनचर्या में डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे, अनहेल्दी लाइफस्टाइल नशा दल की सेहत बिगाड़ रहे हैं। जी दोस्तों, नशा तो आज के समय में जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं उसी तरह से आग की तरह जो है वो फैलता जा रहा है। उस पर भी हम सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ कहते सुनते हैं, लेकिन अगर एक कोई स्टेप लेने की हम बात करें तो शायद हम सिर्फ बातों तक सीमित रह जाते हैं। अब यूं बात करें कि चुनाव की हम बात करें दोस्तों, तो एक छोटा सा सवाल है किसी के लिए, हम पर्सनली तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर आपको इस चीज़ का होगा दोस्तों नॉलेज तो बिल्कुल आप समझेंगे इस बात को, कि अक्सर हम मना करते हैं कि हमारे समाज के बच्चे नशे में जो है जा रहे हैं और हमें इस चीज़ को कम करना है या इस चीज़ को रोकना है, लेकिन चुनावों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, सभी को भी नहीं बोलते हैं, कुछ लोग नशे का सहारा ले रहे हैं। क्या उनको अपनी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है? क्या उनको खुद पे विश्वास नहीं है? जब आप खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर हम इस चीज़ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम कैसे इस पे लगाम लगा सकते हैं? एक जस्ट एक नॉर्मल सी बात आप सभी से कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि सिचुएशन हमारे आसपास चल रही होती है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से उसे रिलेट कर पाएँ और शायद समझ पाएँ। ऐसे हम जब दुकानों में हमारे घर के मेंबर जाते हैं, ठेकों में जाते हैं, तो हम बहुत बवाल क्रिएट कर देते हैं, खास करके महिलाओं की बात करें या घर के मेंबर्स की हम बात करें तो हम वहाँ पर जो है विरोध करते हैं। ज़रूरी भी है, चलो मानते हैं इस बात को, क्योंकि समाज को अगर हमें एक सही दिशा की ओर लेकर जाना है तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन क्या हम एक दुकान बंद कर देने से उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं? सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो हमारे लिए वो है। कोई भी दुकान, अगर सब्जी की ही दुकान आपके आसपास गांव में हम बात करें, अगर जब आप वहां पे सब्जी लेने नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ टाइम के बाद जब उसे बेनिफिट नहीं होगा तो वो अपने आप बंद कर देंगे। बजाय हम वहां जाके लड़ाई करें, हम अपने घर पे बैठ के लोगों को समझाते नहीं हैं, अपने घर के मेंबर्स के साथ बात नहीं करते, बल्कि उल्टी हम कलेश कर देते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, और वो भी घर पे नहीं बाहर वाले के लोगों के साथ, जैसे कि वो उन्हें पकड़ कर लेकर जा रहे हैं और ज़बरदस्ती जो है उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। हाँ, कोई जाने अनजाने में अगर किसी को गलत राह की ओर लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जांचना परखना शायद ज़रूरी होता है। और अभी मैं चुनावों की बात कर रही हूँ दोस्तों, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का सहारा लेते हैं, तो हम उस समय क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? जब हमारे घर में ये चीज़ें आ रही हैं तब हम क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि जब बाहर सोसाइटी में अगर कोई ऐसी दुकान या हमें पता चले तो हम बवाल क्रिएट करते, लेकिन जब घर में ये चीज़ें आ रही हैं तब हम क्यों चुप हैं? तब हम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्या तब हमारे घर के मेंबर उसमें इन्वॉल्व नहीं है? तब आपको बुरा नहीं लग रहा कि नहीं ये चीज़ गलत है? मतलब सही समय पे सही बात के लिए बोलना शायद हमारे में उतनी, क्या बोल सकते हैं, कि हमारी आवाज़ में उतना दम नहीं है या बोलना नहीं चाहते हैं। एक मेंटेलिटी दोस्तों, सारी बातें, कुछ बातें मैटर नहीं करती, मैटर करती है हमारी मेंटेलिटी, कि हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं। तो ज़रूर इस पे थोड़ा सा आप सोचिए, विचारिए। खैर, हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं कि कोई, हाँ जिसने ऐसा किया होगा उसे ज़रूर मिर्ची लगेगी, और खैर हम तो एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि इस पे क्या करना चाहिए। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, सभी का ज़िंदगी जीने का अपना अपना तरीका है, अपने अपने नज़रिए के हिसाब से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ हम क्यों नहीं उठाते? अगर हमें किसी पे विश्वास है, किसी को आगे लेकर आना है, तो क्या इन्हीं बातों के सहारे पे हम उसको आगे लेकर आ सकते हैं, पैसों के दम पे या इन्हीं चीज़ों के पे, इस पे?
हमें काम देखना है, हमें इंसान को नहीं, हमें काम की वो हमारे समाज को विकसित करने के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं, कितना उनमें वो काबिलियत है, हमें हम ये चीज़ें नहीं देखते, हम उल्टे मतलब कुछ और ही बातों को लेकर चलते हैं। तो इस पर थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर सी बात है और सोचने वाली बात है। तो फिलहाल लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों और इस प्यारे से गीत से पहले हम बात कर रहे थे नशे से जुड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के या युवाओं के स्वास्थ्य पे उनके लाइफस्टाइल पे नशे का भी दुष्प्रभाव जो है बहुत गंभीर रूप से पड़ रहा है। तो मैंने ये जो बात आप सभी से साझा की दोस्तों, जो कि चुनावों से संबंधित थी, ये इसका एक ही उद्देश्य था कि अगर बड़े इस तरह से बच्चों के सामने माहौल क्रिएट करेंगे, बड़े जो है बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें करेंगे तो बच्चे कहाँ डर महसूस करेंगे उनके सामने ऐसा कुछ करने से, जब पेरेंट्स खुद उन्हें अलाउ करेंगे एक तरह से। क्योंकि कहते हैं ना कि समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें लगता है कि कुछ चीज़ें सही हैं, लेकिन उसका मतलब हम भूल जाते हैं। तो हम खुद ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे उस तरफ जाएं, क्योंकि उनके सामने जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो उसी में तो ढलेंगे। बच्चा जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तो वो एक कोरा कागज़ होता है, कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह होता है। जैसे उसे ढाला जाता है वो उसी तरह से ढलता है। तो जैसे उनके सामने उनके बड़े बुजुर्ग जो हैं एक माहौल क्रिएट करेंगे, उनके सामने जैसी बातें होंगी वो वहीं से सीखेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप तो एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं और उसके आगे वो बड़ी शुरुआत में कब पहुंच जा रहे हैं ये आपको तब पता चल रहा है जब बच्चे जो है हाथों से निकल चुके होते हैं या बातें हाथों से निकल चुकी होती हैं। तो जब समय ही हाथों से निकल गया तो फिर ना तो संभाला जाता है, ना तो कुछ रह जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा। तो ये जो हम अपनी सोसाइटी में छोटी छोटी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो फिर बहाना कोई भी हो, अगर अपने समाज को एक सही दिशा की ओर लेकर जाना चाहते हो, अपने घर को सही दिशा की ओर लेकर जाना चाहते हो, तो शुरुआत सबसे पहले अपने आप से कीजिए, अपने घर से कीजिए, तभी समाज बदलेगा, तभी देश बदलेगा। तो दोस्तों इसी से जुड़ी एक खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त और स्वस्थ राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार और शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 14 जून तक तंबाकू मुक्त होने का वैधानिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के बाद शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान को आगामी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 अभियान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों प्रशासन की हम बात करें तो वो पूरे एफर्ट्स, पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हर समय जो है बच्चे ना तो स्कूल में होते हैं, ना तो पेरेंट्स के पास होते हैं। थोड़ा समय वो पेरेंट्स के पास बिताते हैं तो थोड़ा समय वो स्कूल में बिताते हैं अपने शिक्षकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक के जो है एफर्ट्स से कुछ नहीं होगा, हम सभी को मिलकर एकजुट होकर इसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो करने होंगे। ये नहीं कि पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं स्कूल में छोड़ दिया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की हो गई, वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं, वो पूरी क्लास को मॉनिटर करते हैं। तो वो एक एक बच्चे को समझाने में अगर समय जाया करेंगे तो अब तो सोचिए कितना अजीब है। लेकिन हाँ, आपके पास आपका एक बच्चा है, आप उस पर प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं, तो आपके लिए तो इजी है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो हम किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स ज़रूर कर सकते हैं। तो ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिए और सोच विचार कीजिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत।

तो से इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं 91.2 MHz पर अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। दोस्तों, हार्ट अटैक अचानक से नहीं होता, इसके कुछ लक्षण हैं जो पहले से ही संकेत देने लगते हैं, जैसे सीने में भारीपन या दर्द, गले, जबड़े, पेट या कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना, सीने में खिंचाव या जलन, किसी एक बाह या दोनों बाहों में दर्द, सांस फूलना आदि। ये सारी बातें एक संकेत रहता है हमारे लिए, लेकिन हम जाने अनजाने कई बार ऐसे ऐसे संकेत नज़रअंदाज कर देते हैं कि बदलते मौसम के साथ शायद कुछ खान पीन में थोड़ा सा हमारा खान पान में शायद ऊपर नीचे हो गया हो, तो उसकी वजह से शायद हमें ये तकलीफ हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जरा सा भी हमें ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कई बार युवाओं को जब इनमें से कोई लक्षण नज़र आते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं, तो उसी की वजह से फिर एकदम से हमें इससे जूझना पड़ता है। और कई बार तो इस तरह से इस इतने भयानक रूप से हमें जूझना पड़ता है कि शायद ज़िंदगी ही हाथों में नहीं रहती। तो इसमें हम क्या, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है? नमक और चीनी की मात्रा कम करें, तंबाकू या अल्कोहल बिल्कुल भी ना लें,

व्यायाम जरूर करें। अगर उम्र 30 वर्ष भी है तो वर्ष में एक बार रूटीन टेस्ट जरूर करवाएं। पहले से कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि, तो उन्हें नियंत्रित रखें। फैमिली हिस्ट्री है तो एस्प्रिन साथ में रखें। वजन नियंत्रित रखें और तनाव से दूरी बनाएं। तो जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण दिखें जैसे कि हमने बात की, तो उस तरह, उस सिचुएशन में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें तो ऐसे मतलब कि ऐसी बीमारी से जूझना नहीं पड़ा होता है, लेकिन एकदम से हमें ये लक्षण हमारी जो है बॉडी में हमें महसूस होते हैं। तो हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जीन्स की वजह से भी एक दूसरे में जो है बीमारियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, होती हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स को हो तो बच्चों को में भी वो बीमारियां आ जाती हैं। तो हमें फैमिली हिस्ट्री ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर आज के समय में इस भाग दौड़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा तनाव में रहते हैं। युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन से गुजरते हैं। तो अगर अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक फिट रखना चाहते हैं खुद को, तो छोटी छोटी सी बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ता जाता है और फिर कब कौन सी बीमारी जो है हमारे शरीर में एंटर कर जाती है पता नहीं चलता। फिलहाल एंजॉय कीजिए दोस्तों इसी के साथ ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं और इसी प्यारे से सफर के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं अपने दिन की। दोस्तों, सुकून का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी को मंदिर की घंटियों में सुकून मिलता है तो किसी को माँ की आवाज में। कोई भीड़ में भी खुश रहता है तो कोई अकेलेपन में खुद को ढूंढ लेता है। कोई अपनों के साथ बैठकर मुस्कुरा लेता है तो कोई खामोशी में पूरी दुनिया जी लेता है। दरअसल सुकून कोई जगह नहीं, एक एहसास है जो हर दिल अपने तरीके से महसूस करता है और उसे खुलकर इंजॉय करता है।

जैसे कुछ लोगों को सुकून मिलता है दूसरों को तकलीफ में देखकर, दूसरों को दुख पहुंचाकर, दूसरों को दर्द पहुंचाकर, लेकिन कुछ लोगों को सुकून मिलता है दूसरों को खुशी देकर। चाहे वो खुद को दुख में रख लें, खुद को दर्द में रख लें, पर अगर उनकी वजह से किसी की ज़िंदगी में हल्की सी मुस्कान भी आ जाए, हल्की सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो शायद उनका सुकून जो है उन्हें मिल जाता है। तो वही बात है कि हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग तरीका है ज़िंदगी को एंजॉय करने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो फ़िलहाल हमारा तो एक ही तरीका है दोस्तों, और वो है मनोरंजन। तो हमारी बातचीत के साथ साथ प्यारे प्यारे से गीत आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। तो आइए अपनी बातचीत को फिर से थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की आवाज के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और देखिए ना दोस्तों, बातें करते करते क्योंकि जिंदगी से जुड़ी खास बातें ना इतनी कुछ खास ही बन जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि समय जो है ना हाथों से फिसलता जा रहा है और जो जरूरी यानी कि जानकारियां वो तो रह ही जाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अपनी बातचीत को थोड़ा सा हम रुख जो है वो बदलते हैं और लेकर चलते हैं आप सभी को जानकारियों की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारियां भी हमारे लिए बहुत जरूरी रहती हैं जानना। दोस्तों प्रदेश के तकनीकी संस्थानों के प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग के 120 विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने सोमवार को तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार ने युवाओं के नवोन्मेषी विचारों और उनके हुनर को मंच प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में सूक्ष्म लघु उद्यमों और स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। जी दोस्तों, इसी के साथ एक और खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निर्धारित उपस्थिति पूरी ना करने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉलेज में ये प्रावधान पहले से लागू है। निदेशालय स्कूल शिक्षा की ओर से कहा गया है कि छात्रों की अनियमित उपस्थिति का असर पढ़ाई अनुशासन और परीक्षा परिणामों पर पढ़ रहा है, तो ऐसे में जो है ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं, घर से आ तो जाते हैं लेकिन कई बार स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं, या तो अटेंडेंस लगा के भी कुछ बच्चे तो वहां से मतलब कि गायब हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना युवाओं का दिमाग बहुत शातिर होता है बच्चों का खास करके, तो नुकसान वो किसी और का नहीं कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो शिक्षकों को बेवकूफ बना रहे हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं पछतावा उन्हें ही होगा। उस समय तो नहीं होगा लेकिन बाद में जरूर होता है। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया है। और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि युवाओं को क्यों ऐसी छोटी छोटी सी उम्र में जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो खराब लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और सबसे ख़ास बात कि या तो बच्चे पढ़ाई के स्ट्रेस में, या तो यूं कहें कि जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल जो है हमारी युवाओं को होना है, डिजिटलाइजेशन में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ के साथ जो है वो समझौते करते हैं। हम पूरी तरह से नींद जो है वो नहीं ले पाते, क्योंकि फोन चलाते चलाते पता ही नहीं चलता कि समय कब कहां से कहां पहुंच गया। नींद की कमी से हार्मोन असंतुलित होते हैं। और एक शोध से सामने आया है कि जो लोग रात में 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से भी, क्योंकि बच्चे सोते नहीं आज के समय में, जब 10-11 बजे तक वो फ़ोन चला रहे होते हैं, सुबह उठते ही उन्होंने फ़ोन चलाना है, तो नींद कहाँ से पूरी होगी। तो इसी की वजह से भी जो है ये बीमारी फेस करनी पड़ती है। ज़्यादा स्ट्रेस हार्ट अटैक को 2 तरह से बढ़ाता है। पहला, तनाव से शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ अधिक बनने लगती हैं जो रक्त वाहिकाओं में चिपक कर खून का बहाव रोकती हैं। दूसरा, बार बार जो है वो एड्रेनलिन वो कार्टिसोल का साफ ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ता है। इससे दिल की नसें प्रभावित होती हैं और हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर का जोखिम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हैवी वर्कआउट बिल्कुल ना करें जी दोस्तों। मध्यम आयु में जिन लोगों को पहले ही हार्ट अटैक हो चुका हो, मतलब ये बीमारी उन्हें पहले से ही फेस करनी पड़ी हो, या जिन्हें हाई बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्मोकिंग जैसी समस्याएं हों, वे अचानक हैवी या मीडियम वर्कआउट ना करें। ये हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। भारतीय भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है जो दिल की बीमारियों को खतरे को कम करती है। हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट, मछली, अलसी के बीज इसके अच्छे स्रोत हैं। जंक और फास्ट फूड खाना नुकसानदायक है। रिफाइंड आटा, प्रिजर्वेटिव चीज़ें सीधे हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ाती हैं, तो इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जो है वो बनानी चाहिए। तो जंक फूड के सहारे तो आज के युवा या बच्चों की हम बात करें तो ज़्यादातर रहते हैं घर का खाना बहुत कम खाना, लेकिन जंक फूड्स की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान रहता है, तो उसकी वजह से भी जो है हमें हार्ट अटैक की बीमारी से जूझना पड़ सकता है। कई कबार हो जाता है, लेकिन जब हमारी डेली की रूटीन बन जाती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए नहीं सही साबित होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही खास खास सी बातें आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी के साथ आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही खास जानकारी भी आप सभी तक जाते जाते जरूर पहुंचाना चाहूंगी। दोस्तों भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर सामने आ गई है। रेल मंत्रालय की गेट नंबर 4 पर देश की पहली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की तस्वीर प्रदर्शित की गई, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति का ध्यान खींच रही है। जी दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को दर्शाती है। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा 6 की जगह महज 2 घंटों में जो है वो पूरी हो जाएगी। तो है ना ये कितनी खास जानकारी। जी दोस्तों, इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। मन की थकान जो उतार दे वो अवकाश चाहिए, इस भागती सी जिंदगी में फुर्सत की सांस चाहिए। चेहरों को नहीं दिल को भी पढ़ने का वक्त हो, मुखौटों से कुछ पल संन्यास चाहिए। अब बहुत मन भर गया बड़प्पन और मान से, बहुत तृप्त अहम झूठी आनवान शान से, इसको भी कुछ दिन का उपवास चाहिए। बन जाऊं तितली या परिंदा कोई वो आभास चाहिए, मन की थकान जो उतार दे वो अवकाश चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसे रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
10: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बी ए एम ए की डिग्रियां है सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918170। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा, बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
3: मिली तो है।
2: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
3: लाए हैं।
4: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
3: उससे बड़ी चीज
4: तो क्या लॉकेट,
3: उससे भी बड़ी।
2: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
3: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
4: ये तो सोने से भी अनमोल है।
5: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
6: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
7: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
6: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
8: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
9: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
10: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
11: और मैं हूँ विकास।
10: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
11: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
11: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
13: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
14: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
13: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
14: एक्सक्यूज मी सर।
13: क्या हुआ?
14: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
13: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
14: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
13: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
14: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
13: श्योर
14: श्योर सर।
15: चलो बेबी चाय।
16: थैंक यू।
15: आपने आज की न्यूज सुनी?
16: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
15: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
17: ओह नो।
16: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है,
15: पता
16: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
15: और क्या।
18: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जोकी सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। देखिए, खुश रहना जो है वो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, हंसते रहना जो है वो जिंदगी में बड़ा ज्यादा जरूरी है श्रोताओं। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम हंसने मुस्कुराने वाला तो नहीं है, कार्यक्रम विशेष ये कार्यक्रम है श्रोताओं, जिसका नाम है चुनाव संवाद। जी बिल्कुल, चुनाव संवाद कार्यक्रम में आप हर रोज जो है वो अपने प्रतिनिधियों के साथ मिल रहे हैं, जो कि प्रधान पद के लिए, उप प्रधान पद के लिए या फिर BDC के लिए जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो जी, आज इस कड़ी में, आज इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं सुनील कुमार, और जिनको प्यार से तूनू के नाम से भी जाना जाता है। जी बिल्कुल, टीका चतैड़ के ये रहने वाले हैं, योल कैंट की मैं बात कर रहा हूँ, टीका चतैड़ के ये रहने वाले हैं और बहुत ही ईमानदार हैं और साथ ही साथ बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। लोगों की मदद के लिए जो है वो अक्सर हमेशा आगे अपने पैर जो हैं वो बढ़ाते हैं, आगे अपने हाथ जो हैं वो अक्सर बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल जी, सुनील कुमार जी, आपका वेड़ी गुंजन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
1: सचिन जी, आपका भी मेरे को वेड़ी गुंजन में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया।
0: चलिए सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और क्योंकि इस समय चुनाव संवाद ये कार्यक्रम चल रहा है और आप चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो बखूबी कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर आप कर रहे हैं, काफी बिजी शेड्यूल जो है वो इस समय आप सभी का रह रहा है, लेकिन ये एक कार्यक्रम हमने इसीलिए चलाया है कि लोगों तक जो है वो ऐसे चेहरे पहुंचे, ऐसी आवाजें पहुंचे जिन्हें लोग जान सके कि इस पंचायत से भी जो है वो कोई ना कोई जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन सुनील जी, पहले आप लोगों को बताइए, अपने धर्मशाला के लोगों को बताइए कि आपकी स्टडी कहाँ से हुई।
1: मेरी स्टडी मैट्रिक मैंने AFCB हाई स्कूल योल कैंट से की हुई है, उसके बाद मेरी प्लस टू जो है वो टंग नरवणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर तक कॉलेज डिग्री कॉलेज धर्मशाला में, उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि उस वजह से मुझे आगे पढ़ाई नहीं कर पाया मैं, तो मैंने सेकेंड ईयर में धर्मशाला से ड्रॉप कर दिया था।
0: चलिए, परिस्थितियाँ जो है वो इंसान के जीवन में बहुत आती हैं, और आज आप इस काबिल बन चुके हैं कि आप अपनी पंचायत को सुधार करने के लिए जो है वो अपना कदम आगे आपने रखा है। और सुधार करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ श्रोतों, आप सभी को मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आइए सबसे पहले सुनील जी हमारे गेस्ट है, तो इनका पसंदीदा गीत जो है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सुनील जी, आप बताइए कि आपका कोई भी पसंदीदा गीत आप सुनना चाहते हो।
1: सचिन जी, जो आपको अच्छा लगे वही पहाड़ी का सॉन्ग मेरे को सुना दीजिए।
0: चलिए सुनील जी, बिल्कुल आपकी पसंद में हम एक पहाड़ी लोकगीत जो है वो जरूर सुनेंगे। श्रोताओं बने रहिएगा रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। चुनाव संवाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ टीका चतैड़ से उप प्रधान पद के लिए खड़े सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए, सुनील जी के बारे में तो हम सभी ने जान ही लिया है, लेकिन चलते हैं कि उप प्रधान पद के लिए सुनील जी को ये जागरूकता कहाँ से आई और कहाँ से इन्हें लगा कि मुझे जो है उप प्रधान पद के लिए जो है वो खड़ा होना चाहिए, आपको रुचि कहाँ से आई?
1: एक्चुअली सचिन जी, बात ऐसी है कि हमारी जो पंचायत तो नहीं थी, हमारा पहले था कंटोनमेंट, और कंटोनमेंट को टूटे हुए आज 10-12-15 साल हो गए। तब से लेकर आज तक हमारे गाँव का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, तो ये सब कुछ देखने के बावजूद एक अपने दिल में ऐसा फील होता था कि हमारा भी कोई पंचायत हो तो शायद हमारे गांव का विकास होता। जिस गांव में अगर मान लो 15 साल तक कोई आपका ये देखने वाला नहीं है तो गांव कितना पिछड़ा होगा।
0: चलिए, बहुत सही बात की सुनील जी ने कि गांव, मुझे लगता है क्योंकि पिछले 15 सालों से जैसे कि सुनील जी बता रहे हैं कि पंचायत नहीं थी, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर था, तो गांव बहुत पिछड़ा होगा और बहुत काम जो है वो उस गांव में करने होंगे। क्या क्या काम करेंगे सुनील जी, ये आपको हम जरूर बताएंगे श्रोताओं, और फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आइए इसी बीच में सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत, बने रहेगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला है और आप सभी चुनाव संवाद कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए तो चलते हैं, आज हम टीका चतहड़ के उस शख्स से बात कर रहे हैं जो कि उप प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं और रुचि रखते हैं उप प्रधान पद में, और जीतने की वो ललक भी है, वो जोश भी नजर आता है कहीं ना कहीं। चलिए अब जोश इनकी बातों से हम देखते हैं कि कितना जोश जो है वो नजर आता है इनकी बातों से। तो सुनील जी, आप अपनी पंचायत को क्या क्या मूलभूत सुविधाएं देंगे?
1: सचिन जी देखिए, अगर मेरे को चितैड़ पंचायत के लोग मेरा सहयोग करते हैं और मुझे उप प्रधान पद पर नियुक्त करते हैं, जैसे मान लो कि अभी हमारे एरिया में एक कम्युनिटी हॉल नहीं है,
0: बहुत बड़ी बात,
1: अगर हमारे एरिया में एक कम्युनिटी हॉल बन जाए तो उसमें कई ऐसे भी पब्लिक है जो मतलब अपने घर छोटा होने के कारण शादी मैरिज की प्रॉब्लम होती है, छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम करना हो तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, कई जगह जाके होटल बुक करवाते हैं या कुछ करते हैं। अगर ये चीज़ हमारे एरिया में बन जाए, एक कम्युनिटी हॉल बन जाए, तो बहुत से लोगों की ऐसी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हमारे एरिया में एक कम्युनिटी हॉल बनने से जैसे MLA साहब आते हैं, कोई मंत्री साहब आते हैं, मीटिंग करते हैं, तो मंदिर की बजाय अगर कम्युनिटी हॉल में की जाए तो बहुत बेटर
0: रहेगा। हाँ बिल्कुल, और आजकल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लोगों के घर जो है वो छोटे छोटे होते हैं, है ना, वो उस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया होता है। और ये मुझे आपकी सुनील जी बात बहुत ही प्यारी लगी कि आप एक विजन जो है वो अपनी टीका चतहड़ पंचायत के लिए लेके चल रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात कम्युनिटी हॉल की आपने बात की है, जो कि कई सालों से मुझे लगता है टीका चतहड़ में था ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है कोई कमरा ही नहीं था, ऐसा कोई कमरा ही नहीं था। ये विजन बड़ा क्लियर है आपका कि कम्युनिटी हॉल को लेकर जो है आपने बात कही, ये वाकई में बाकमाल है। तो चलिए, और किस तरह की सोच आप अपने टीका चतहड़ के लिए रखते हैं? देखिए, कहते हैं ना कि इंसान अगर अच्छा रहेगा, इंसान का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए जो है वो आप क्या कुछ करना चाहते हैं?
1: हमारे एरिया में एक हेल्थ सेंटर भी जरूरी है, होना चाहिए, जो कि मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए मतलब सॉल्व हो जाए,
0: डिस्पेंसरी
1: टाइम में जो है वो होना चाहिए। हमारे एरिया एक ऐसा एरिया है जो मतलब अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। अभी जैसे मैं कई जगह जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हमारे एरिया में स्ट्रीट लाइटें नहीं है, कहीं पे अंधेरा है, हमारी गलियाँ कच्ची है, तो ऐसी ऐसी बहुत सी भी प्रॉब्लमें सामने आ रही है। जैसे जैसे हम गांव में अभी जा रहे हैं तो लोगों को विचार सुन के ऐसा बहुत सुनने को आ रहा है, कोई बोलता है कि हमारे एरिया में स्ट्रीट लाइटें नहीं है, कोई बोलता है हमारे रास्ते कच्चे है, कोई बोलता है कि यहाँ से रात को जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे अभी जब हम गाँव में लोगों के घर तक जा रहे हैं तो पता चल रहा है इस बारे में।
0: चलिए श्रोताओं, सुनील जी से और भी बातचीत हम जरूर करते रहेंगे। आप सभी बने हुए इस समय कार्यक्रम चुनाव संवाद में और सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए लेके चले इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना वेडी गुंजन आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय चुनाव संवाद चल रहा है आपके अपने वीडियो सेट पर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील कुमार जी, जो कि टीका चतैड़ के निवासी हैं और उप प्रधान पद के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। तो इनका विजन हम जांच कर रहे हैं, इनका विजन जो है वो आप तक भी हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह का विजन लेके ये उप प्रधान पद के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा सुनील कुमार की ओर। और सुनील जी, बच्चों को खेलने के लिए नेचुरल सी बात है कि पार्क हमें जो है वो चाहिए। जहां तक मैंने स्टडी किया है टीका चतैड़ को, एक पार्क जो है वो वहां पर बना हुआ है। अगर आपको टीका चतैड़ की जनता और स्लेट गोदाम की जनता अगर आपको विनर बनाती है, तो आप कितने पार्क जो है वो वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे और किस तरह के फुटपाथ या ग्राउंड वहां पर जो है वो बना सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए?
1: सचिन जी, बात ऐसी है कि चतैड़ में तो एक छोटा सा पार्क है बना हुआ है, वो हमारे कुलदीप जम्बाल साहब ने उसको डेवलप किया है थोड़ा बहुत। उसमें थोड़ा अगर और डेवलपिंग हो जाए तो अच्छा होगा। और एक ऐसा ही पार्क छोटा सा स्लेट गोदाम में भी बनना जो है बहुत जरूरी है। अगर कहीं वैसे कोई स्पेस है तो वहाँ पे भी एक बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाने की आवश्यकता है वहाँ पे। तो यानी कि इससे क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सुबह शाम खेल के थोड़ा अपना जो माइंड है वो फ्रेश कर लेता है, तो उससे बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, अपने शरीर की फिटनेस भी ठीक रहती है और माइंड भी उसका स्वस्थ रहता है। और ऐसा होना चाहिए पार्क में जो शाम के टाइम पे हमारे जो बुजुर्ग आदमी हैं गांव के, जैसे शाम के टाइम जाके जैसे पार्क में आराम से टहल सके, बैठ सके, थोड़ी देर के लिए अपना आनंद ले सके
0: जी।
1: तो ऐसी जो चीजें हैं हमारे एरिया में वो होना बहुत जरूरी है।
0: यानी कि एरिया को अभी जो टीका चतैड़ है उसे विकसित करने में अभी काफी समय जो है
1: टाइम लगेगा।
0: तो चलिए, आप लोग विजन लेकर चले हुए हैं, आप जितने भी और भी कैंडिडेट खड़े हैं आप सभी को भी जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जीत हार तो होती रहती है, वो एक जिंदगी का दो पहलू तो होते ही है, कभी सुख कभी दुख तो कभी जीत कभी हार। लेकिन जो विजन सुनील जी बता रहे हैं हम सभी को, इस समय इस विजन पर भी काम होना जो है मुझे लगता है वो अत्यंत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा, जुड़े रहेगा वीडियो गुंजन की गूंज के साथ।

0: कार्यक्रम में वेड़ी गुंजन धर्मशाला में आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है चुनाव संवाद। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और जैसे कि आप सभी बखूबी जान रहे हैं कि हमारे साथ आज सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्यार से तुनु भाई के नाम से भी बहुत सारे मुझे लगता है सुलेड़ गोदाम की जनता है, योल अटिका चितेड़ की जनता है जो इन्हें तुनु भाई के नाम से जानती है, ये इनका वैसे निकनेम है। तो इस नाम से आप काफी फेमस है। अच्छा तुनु जी, चलिए इलेक्शन की बात तो हम करेंगे, लेकिन इस नाम से आप क्यों फेमस है ये बताइए पहले।
1: एक्चुअली ये जो मेरा नाम है ना, ये मेरे घर वालों ने बड़े प्यार से रखा हुआ है, तो अभी जो प्यार से नाम रखा हुआ तो उसी नाम से मतलब मुझे लगभग सभी जानते हैं।
0: चलिए, घर वालों का प्यार और आशीर्वाद सदैव जो है वो चाहिए होता है श्रोताओं। भाई चलते हैं अब, क्योंकि चुनाव संवाद कार्यक्रम है तो लेके चलते हैं आपको। सुनील जी, मैंने देखा है टिकट चितैड़ में जो है, या सुलेड़ गोदाम की हम बात कर ले, बहुत प्यारा सा वहां से ना एक छोटा सा नाला जो है वो बहता है। उस नाले में मैंने चीजों को थोड़ा सा एनालाइज किया कि वहां पे बहुत कूड़ा कचरा जो है वो फेंका होता है। एक दो मोड़े और हैं उसी रोड पे, वहां पर जो है वो लोगों ने कूड़ा करकट इतना ज्यादा फैला होता है कि वो बहुत अच्छा, वैसे वादियां बहुत अच्छी है वहां की ना, ठंडी हवाएं चलती हैं वहां पर, लेकिन वो जब कूड़ा कचरा सामने दिखता है, वो स्मेल आती है, तो वो एकदम दूषित हो जाता है। क्या कुछ समझ रखते हैं इसके ऊपर, अगर आप जीत कर आते हैं तो किस तरह से इसका निवारण करेंगे?
1: सचिन जी देखिए, अगर चितैड़ पंचायत जो मेरे उपप्रधान पद के लिए अगर नियुक्त करती है, मेरा सहयोग करती है, तो मैंने खुद देखा ये जो कचरे की समस्या जो है ना, ये बहुत ज्यादा समस्या है कचरे की। जैसे अभी पार्क के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है, कहीं नाले में जाऊं वहां कचरे का ढेर लगा हुआ है। आपको खुद पता है जिस पंचायत को 10 या 15 साल से कोई प्रतिनिधि नहीं मिला अभी तक, तो अगर मेरे को चितैड़ पंचायत को प्रधान पद पर नियुक्त करती है तो इस चीज का मैं समाधान करूं। जैसे कि नगर निगम में गाड़ियां लगी हुई है जो आती है कचरा उठा के ले जाती है, वैसे ही हम एक गाड़ी यहां पे प्रोवाइड कराएंगे और लोगों को भी अपील करेंगे कि आप कचरा यहां मत, जो कचरा है जैसे गाड़ी आई उसमें डाल दिया करो। इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो पब्लिक का ही है। इसमें अगर जो पब्लिक सहयोग करेगी तभी इस चीज का समस्या का हल हो सकेगा। तो सारा कचरा बह के फिर वो खेतों में चला जाता है, जिससे जो खेतों में चला जाता है तो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। पार्क में जैसे कचरा फेंका हुआ, वहां पे बच्चे शाम के टाइम थोड़ा खेलने जाते हैं कुछ, तो वहां पे भी इससे मैल चली होती है। अब जहाँ कचरा पड़ेगा वहां पे आवारा कुत्ते भी आएंगे, तो छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेलते हैं, आजकल आवारा कुत्तों का पता नहीं है कि वो कब बच्चों को भी काट दे। तो इस चीज के लिए कचरे का समाधान जो है हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, ताकि हमारा गांव जो है स्वच्छ रहे और साफ सुथरा बना रहे।
0: जी, तो बिल्कुल जो आपने बात कही मुझे बिल्कुल सत्य लगी है कि वहाँ पर जहाँ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टिका चितैड़ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पार्क तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन उसी के साथ में जो है वो एक छोटा सा, मान लो जैसे दिल्ली में वो कूड़े का पहाड़ दिखता है ना सुनील जी, वैसा वो पहाड़ जो है वो वहाँ से नजर आता है, वैसा वो आईना नजर आता है कि उस तरह से जो है वो कूड़ा इतना ज्यादा वहाँ पर हो चुका है। और सही कहा आपने कि पिछले 10-15 सालों से जो है वो प्रतिनिधि ना मिलने के कारण जो है वो टिका चितैड़ में इतनी ज्यादा समस्याएं जो है वो चल रही हैं। साथ ही साथ श्रोताओं आपको बताना चाहता हूँ, टिका चितैड़ में और भी अनेक समस्याएं जो हैं वो हैं, तो हम विजन जो है वो सुनील जी का जान रहे हैं कि किस प्रकार का इनका विजन जो है वो अपनी पंचायत को लेकर रह रहा है। चलिए और भी इनसे बातें करेंगे और भी इनका विजन जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रोताओं आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, लेके चले आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं चुनाव संवाद। चुनाव संवाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः मैं आपका अपना आरचे नाचीज सचिन कपूर स्वागत करता हूँ।

0: करने के लिए तैयार हूँ। इसमें जो पीने का पानी है वो जो हमारे आईपीएस के मुलाजिम है वो बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि वो हमें कभी पानी नहीं है, टाइम टू टाइम पानी आता है। पर ये पानी की बात ऐसी है ना कि अभी जैसे गर्मी में जो है ना पानी कम हो जाता है,
1: समस्या
0: समस्या हो जाता है। पहले क्या थे, पब्लिक थोड़ी थी, पानी ज़्यादा था। अब दिन प्रतिदिन पब्लिक बढ़ रही है।
1: बढ़ रही
0: आप
1: है,
0: देख लो, एक घर में ज़्यादा नहीं तो 5 नल या 10 नल के तो
1: पांच
0: लगे ही।
1: सात
0: तो पहले गांव में कहीं जाके एक नलका होता था,
1: हाँ।
0: तो मतलब पूरे गांव वाले उसी नलके से पानी भरते थे और मतलब पानी भर के रखते थे।
2: अच्छा चलिए सुनील जी, आप बताइए आपको अपनी याद में जो है वो कहाँ टिका चतायड़ में आपको सबसे पुराना नल याद है।
0: हमारे को सबसे पुराना नल एक हमारे घर के पास लगा होता था, एक हमारे घर से ऊपर लगा होता था। मतलब गांव में कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 10-15 नल थे, उससे ज्यादा नहीं थे। गांव वाले सारे वहीं जाते थे, पानी भरते थे,
2: लाइन लगती थी वो
0: लाइन
2: गांव
0: लग
2: में।
0: जाती थी और 2 टाइम पानी आता था या 3 टाइम पानी आता था।
2: अच्छा,
0: आज 24 घंटे लगभग चतैन में पानी है,
2: 24 घंटे
0: पानी चला रहता है, क्योंकि हमारे जो मुलाजिम है आईपीएस के वो बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो गर्मी में पानी कम हो जाता है वो तो हर किसी को प्रॉब्लम आ जाता है। और दूसरी बात ये है सचिन जी, हमारी जो कूलें थी वो अभी हमारे यहाँ किसान जितने भी किसान हैं वो सारे बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर बारिश होगी तब जाके वो खेती बाड़ी करते हैं। छोटे होते थे हम, जब हम खुद खेती करते थे तो हम खनियारा से जाके जो गंजर महादेव का मंदिर है वहां से हमारी पानी की कूल आती थी, पर वो आज तक नहीं बनी। बहुत लोगों ने आश्वासन दिए कि हम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर आज दिन तक वो नहीं बनी। दूसरी कूल जो थी हमारी यहाँ से नोट से आती थी, जो सुलटगदाम
2: नोट
0: नोट जो
2: नोट
0: है
2: बहुत फेमस है।
0: वहां से आती थी, अभी वो भी कूल बंद पड़ी हुई है। तो अभी चितैड़ के जो किसान जो लोग हैं वो टोटली बारिश के ऊपर डिपेंड। इन चीजों का समाधान करना पड़ेगा। जैसे अगर पंचायत में हम आते हैं तो जैसे भी हो सकेगा इन कूलों को चालू कराना पड़ेगा, ताकि योल के जो निवासी किसान जो है वो अपनी खेती बाड़ी आराम से कर सके। और एक समस्या हमारे को ज्यादा ये आ रही है कि आजकल जो है जंगली सूअर जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हुए हैं, तो किसान उस वजह से बहुत परेशान है, इसलिए किसानों ने आधुनिक खेती करना छोड़ दी हुई है। तो इस चीज का भी हमें कोई ना कोई समाधान या हल ढूंढना ही पड़ेगा, ताकि
2: पड़ेगा
0: किसान जो है फिर अपनी खेती की तरफ
2: जा सके।
0: जा सके।
2: चलिए सुनील जी, आपने बहुत जो मुझे लगता है डाउन टू अर्थ बातें होती हैं, जो घरेलू बातें होती हैं, वो आपने इस शो में, इस कार्यक्रम में जो है वो कही है और लोगों तक ये समझ पहुंचाई है कि कितनी समस्या जो है वो टीका चतायड़ में है। और अगर आप जीत कर आते हैं तो कोशिश जरूर करेंगे आप इन समस्याओं का समाधान करने की। ये हमारी भी आशा है कि आप जो है समस्याओं का समाधान जो है वो जरूर करें। बहरहाल श्रोताओं, आप सभी बने हुए वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम चुनाव संवाद सुन रहे हैं। तो आइए लेके चलें आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम चुनाव संवाद इस समय चल रहा है आप सभी के रेडियो सेट पर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हमारे साथ योल कैंट टीका चतैड़ के जो प्रधान पद के लिए खड़े हैं सुनील कुमार उनका नाम है प्यार से तुणु भाई कहते हैं और प्यार से क्यों कहते हैं वो भी तुणु भाई ने हमें बता दिए कि क्यों उन्हें प्यार से तुणु भाई कहा जाता है। लेकिन आइए फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनील जी सबसे बड़ी मुझे ये लगता है जो सुलेड़ गोदाम वालों के लिए दिक्कत है जो हम भी बरसों से देखते आ रहे हैं बरसों से हम भी महसूस कर रहे हैं जो टीका चतैड़ वालों के लिए समस्या है वो ये है कि वहां पर कोई बस सुविधा नहीं है वहां पर कोई टेम्पो ट्रेवलर वाली सुविधा नहीं है या बस सुविधा हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर जो है वो स्कोप लगता है। तो किस तरह से देखते हैं आप कि वहां पर कभी लग सकती है बस सुविधा क्योंकि सबसे बड़ी आफत जो है वो मुझे लगता है कि सुलेड़ गोदाम वालों को और टीका चतैड़ वालों को आती होगी खासकर इन दिनों में गर्मियों के दिनों में।
1: सचिन जी अगर योल के गांववासी चितैड़ के मेरे को उप प्रधान पद पर नियुक्त करते हैं तो इस चीज की समस्या का हल करना चाहिए। अभी सुलेड़ गोदाम के लिए बस जाती है पर वो बाया कस्बा नरवाना होके जाती है तो अगर वही बस यहाँ से योल से जाए टीका चितैड़ से होते हुए जाए तो वहां से चितैड़ के गांव के निवासी भी हो जाएंगे और सुलेड़ गोदाम में भी। पर यहाँ पर एक बार बस लेके आए थे पर वो बस उन्होंने पास नहीं की थी। अभी छोटे रोड में गुंजा सीटेड बस नहीं निकल सकती।
0: तो क्या आपका ऐसा विजन है कि आप
1: तो इसका विजन ये है कि जैसे गवर्नमेंट के पास छोटे टेम्पो ट्रेवल वगैरह जो है आजकल चले हुए अगर वो एक दो तीन टाइम सुबह के टाइम या स्कूल के छुट्टी के टाइम पर लगा दे तो इससे बहुत सारी समस्या बच्चों का हल हो जाएगा जो स्कूल में आते हैं धूप में आजकल पैदल चलना पड़ता है तो उसमें वो जा सकते हैं और उनके लिए बहुत सुविधा होगी इस चीज की।
0: बुजुर्गों के लिए
1: भी हो जाएगी और जो भी सुबह और शाम मैक्सिमम सुबह के टाइम और शाम के टाइम दो टाइम में होना चाहिए ऐसी चीज ना जिससे कि मतलब इस प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा सोल्यूशन निकल जाएगा।
0: तो गलियों को लेकर स्ट्रीट लाइटों को लेकर क्या आप समझ रखते हैं?
1: सचिन जी ऐसी बात है अगर लोग मुझे विश्वास करेंगे और मुझे जिताएंगे तो जितने भी जहाँ भी स्ट्रीट लाइट लगने की जरूरत होगी जैसे भी हमारी कई ऐसी गलियां हैं जो कच्ची है अभी तक वहाँ पे भी अंधेरा जाता है कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है तो जितनी भी प्रॉब्लम होगी जहाँ भी स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत होगी हम पूरा सहयोग वहीं करेंगे स्ट्रीट लाइट लगाने का और जो गलियां हमारे गाँव में अभी तक कच्ची है उनको पक्का करने की जरूरत करेंगे। जैसे मेरे विचार से दो की स्ट्रीट लाइट हमारा जो मुक्ति धाम है वहाँ पे भी दो स्ट्रीट लाइट लगाने की बहुत जरूरत है आज दिन तक वहां नहीं लगी हुई है कोई स्ट्रीट लाइट। थोड़ी वहां पे पानी की व्यवस्था भी चाहिए ताकि मतलब आदमी जब कभी कोई आता हो वहां पे पानी पीने के लिए भी होना चाहिए। वहां पे पहले नलके लगाया था पर वो पता नहीं शरारती तत्वों ने तोड़ दिया हुआ है तो ऐसा पब्लिक से सहयोग चाहिए कि ऐसी जो चीजें हैं उनको ना नुकसान पहुंचाए उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि मतलब कहीं भी पानी पीने के लिए होना चाहिए अच्छा से तो स्ट्रीट लाइटें भी वैसे ही होना चाहिए जहां जरूरत है वहीं पे होना चाहिए। ये नहीं है कि स्ट्रीट लाइट ऐसी जगह लगाओ जहां जरूरत ना हो स्ट्रीट लाइट ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पे पब्लिक को जरूर। तो
0: बिल्कुल सुनील जी ने बहुत सही बात कही है कि स्ट्रीट लाइट जो है वो ऐसी जगह लगनी चाहिए जहाँ पे जरूरत हो जहाँ पे आवश्यकता हो है ना लोगों के घर के बाहर क्योंकि स्लेट गोदाम जो है वो वन क्षेत्र से होकर जाता है ना। हमारी कुछ गलियां ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा वहां पर झाड़ है तो ऐसी जगह जो है वो जरूर लगनी चाहिए स्ट्रीट लाइटें। बहरहाल आप सभी बने हुए सचिन कपूर के साथ चुनाव संवाद कार्यक्रम सुन रहे हैं आइए लेके चलें आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं चुनाव संवाद। आइए लेके चलते हैं आप सभी को अब चुनाव संवाद के आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सुनील कुमार जी उनकी ओर। सुनील कुमार जी, युवाओं को लेकर जो है वो क्या आपने सोच रखा है, क्या विजन है आपका?
1: सचिन जी, अगर चतैत पंचायत मुझे चुनाव में विजय घोषित करती है तो आजकल देखने में आ रहा है कि युवा जो है, ज्यादातर युवा जो है वो नशे की तरफ उतर हुआ दिख रहा है। तो इसलिए अगर मैं इसमें उप प्रधान पद पर नियुक्त होता हूँ तो मैं युवाओं के लिए एक जिम जो है वो कहीं ना कहीं पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मतलब जितने भी युवा है वो आराम से जिम में जाए और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखे ताकि वो नशे से दूर रह सके।
0: चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छी सोच समझ रखी है कि मतलब आप जिम जो है वो एक बनाना चाहते हैं, ओपन जिम आई थिंक आप बनाएंगे जिसमें सभी जो है वो हिस्सा ले सके, सभी भागीदार जो है वो बन सके। तो ओपन जिम का आप निर्माण जो है वो करना चाहते हैं अगर आप जीत कर आते हैं और आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो। तो चलिए जी, जनता का आशीर्वाद हम भी चाहते हैं आपको जरूर मिले और जीत कर आप जरूर आए, क्योंकि आपने जो विजन बताए हैं अभी तक जो आपका टीका चतैड़ को लेकर विजन है, जो सोच है, जो समझ है, उसमें हमने कहीं ना कहीं ये एनालाइज किया है कि काफी अच्छी परख है आपकी टीका चतैड़ को लेकर। तो चलिए श्रोताओं, लेके चले आप सभी को इस कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत की ओर।

0: कार्यक्रम चुनाव संवाद में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडियो गुंजन आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूं आपका अपना आरजे। तो आइए कार्यक्रम में समय हो चुका है श्रोताओं अब आप सभी से अलविदा लेने का। जाते जाते सुनील कुमार उर्फ तुणु भाई क्या गुहार लगाते हैं आप सभी से, आइए सुनते हैं।
1: सचिन जी, मैं अपनी चितेर पंचायत से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर वो मुझे उप प्रधान पर विजय बनाते हैं, अपना आशीर्वाद रखते हैं, तो मैं अपनी चितेर पंचायत का पूरा आभारी रहूंगा और जितना भी हो सकेगा मैं उनका पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से मैं चाहूंगा मेरी पब्लिक को मेरे घर ना आना पड़े, मैं उनके खुद घर में पहुंच के उनकी समस्या का हल करूंगा, ताकि वो आने वाले 5 साल के बाद खुद बोले कि हमें प्रधान नहीं अपना छोटा बेटा चाहिए, बच्चा चाहिए, भाई चाहिए, जो कि हमारी अच्छे से सेवा करे। तो मैं पंचायत से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे पूरा सहयोग दें और विजय बनाएं और वोट डालें, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: चलिए सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कार्यक्रम सुनने के लिए। बहरहाल जनता जनार्दन है और सुनील जी जो भी फैसला आएगा वो जनता करेगी, जनता का फैसला सर आंखों पर होगा। मुझे यानी सचिन कपूर को दीजिए आप इजाजत कार्यक्रम चुनाव संवाद से, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले कैंडिडेट के साथ, किसी अगले उम्मीदवार के साथ। नमस्ते धर्मशाला।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091710917091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
10: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: चलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है? अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

श्रोताओ, मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी हुण लैंदी आ तुहाडे तों इजाजत पंजाबी गीतां दे इस कार्यक्रम ते। फिर मिलांगे, सुनदे रहो रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंदी।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, पर फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
10: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बी ए एम ए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: 91.2 MHz पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशी हाजिर होई यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ताशो तो तुहां सारिया दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशी दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तुहां सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा रोजाने दा काम मैं से करा दे उने न कने जेड़ा काम मन सभी हंदे कदी खत्म नहीं होंदे कने जेड़ा हंदे श्रोता न तिना जो भी इंतजार जेड़े से जरूर रहंदे कि कालू दिया 2 बजे न कने कालू दिया हाँ इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न। पहले श्रोता हाँ कने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्ते सचि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी धन्यवाद
0: जी। क्या काम काल गया तुहां, क्या करा दे आज?
1: कोई नहीं, इंतजार दे करा दे तुहांदा
0: जी। अच्छा, इंतजार करा दे थे कि कालू दिया 2 बजे ना?
1: हां जी हां जी। और तुहां ठीक है ना
0: जी? हां जी, हां बिल्कुल ठीक ठाक है जी। जी ता मौसम
1: सब्जी खा ली कि नहीं
0: जी? अली ता नवा नहीं लगाया जी, तो हाँ लगाई लिया नवा
1: लुंगड़ू
0: जी? लुंगड़ू ता नवा लगाई लिया।
1: अच्छा, बड़ी खुशी है
0: जी। तुसा लगाई लिया नवा लुंगड़ू दा?
1: हां लुंगड़ू मेरा कहना दस्या आड़े ना भी
0: जी। अच्छा, लसे आड़े दा भी लगाई लिया?
1: हां जी हां जी
0: जी। मन ता बड़ा करा दा हुन कोई ना जाना पड़ा
1: चले हो ना
0: जी जी।
1: आजा
0: जी जी, जरूर जी
1: जी।
0: अपनी नेचुरल सब्जियां होनी है ना जी ये?
1: हां जी हां जी
0: जी जी। तो प्रकृति दी देन ता हम वास्ते बड़ी ज्यादा है ना जी?
1: हां जी हां जी बिल्कुल
0: जी जी। थोड़ा दिया इस दी बनाने दी जेड़ा रेसिपी है से थोड़ी कठिन है ना जी?
1: हां लगदा ना
0: जी जी, टाइम बड़ा लगता है ना जी
1: टाइम लगता है, लेकिन सब्जी बड़ी अच्छी है, अंदर होगी सब्जी है
0: जी जी। बड़ी अच्छी सब्जी है, टेस्ट भी होंदी, पर आजकल बच्चे जेड़ा से खाना पसंद नहीं करते ना जी
1: तेरे ने चौमिन चाहिए
0: जी जी ये भी सही बोले तो हाँ कि चौमिन चाहिए दी
1: चौमिन चाहिए ना मोमो
0: जी जी। पर कुछ ना कुछ ये चौमिन मोमो जेड़े से आंदी सेहत जो बिगाड़ी दे ना जी।
1: ए शुरू शुरू से लांबे खांदे थे
0: जी? अच्छा अच्छा,
1: लांबे जेड़े ना
0: जी,
1: यार तो इसको रोड़ा में काम लग गया रहे खांदे थे, कहीं जल्दी बन जाता ना
0: जी जल्दी जी जी।
1: आजकल से लांबे सब कुछ ठीक था, कनेक्ट से लोग लगी पे खाना
0: जी। अपना प्रकृति दी देन है, इस देन दा जेड़ा फायदा है जो थोड़ा दिया लेना चाहिदा ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। कने जेड़ा लस्याड़ियां दी अहां गल कीती, हर जगह अपना अपना नाम हुंदा ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी। कई लसूड़े भी बोल दे, कई लस्याड़े भी बोल दे जी जी। कने चंगरे वाली साइड तो ज्यादा हुंदे ना जी ये?
1: हां चंगरा च हुंदे ज्यादा
0: जी, चंगरे च ज्यादा जी। जी अच्छा है ने, तो हंदी साइड भी है ने?
1: हां इठो ना किल्ला ना बूटा ना
0: जी,
1: बड़ा लगी रे
0: जी जी। ताता चलो अच्छी गल है ना जी।
1: हां जी
0: जी। तो मेघना जी, आज तो हां कुंतिया गीत सुनना पसंद करके
1: आज? हां ये सुनना है, मत कर बंदिया गुमान एक दिन मिट्टी च मिल जाना
0: जी। जरूर जी, मत कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी विच मिल जाना।
1: हाँ जी
0: जी, जरूर ये फरमाइश तुहां तक पहुंचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। अगले जिहड़ा श्रोता ने सब यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने भी गल बात। हेलो श्रोताओं कॉल जिहड़ा से डिसकनेक्टेड हुई हो तो अपने कार्यक्रम दे सफर जो हाँ अगे बढ़ाते न कन्ने शुरुआत जिहड़ा से कर दें एक प्यारे दे गीत कन्ने। तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते कन्ने यहाँ कन्ने जिहड़ा गल बात है से जरूर करी सकते। श्रोता फिरी तिहां कन्ने जुड़ा दे न तिना जो जोड़ दे न कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: हां जी ठीक ठाक मैडम जी।
0: जी तो हां कुथु ते बोला दे कने तो हंदा ना के है जी?
2: बाप रे बोला मैडम जी रणजीत है ना
0: जी। शाहपुर वाले दे क्या हाल चाल है जी?
2: ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ
0: ਜੀ, ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਾ ਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਏ
0: ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਮਨ ਕਰਾ ਦਾ?
2: ਬੜੀ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਏ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਲੂਸ ਪਈ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਹੋ
0: ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
0: ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਜੀ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ। ਤਾਂ ਪੇੜਾਂ ਵਾਸਤੇ
2: ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਰੋਡ ਬਣੇ ਦੇਖਾ ਜੀ, ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਭ ਨੇ ਕੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਅੱਡੇ ਸਾਰੇ
0: ਜੀ। ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੇੜ ਅਗਰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਡ ਬਣੀ ਆ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੇੜ ਅਗਰ ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਗਰ ਹਾਂ

0: मेहनत करी करी लगाई भी दिंदे ना ते देखभाल भी करते ना, पर ते जो एक बड़ा पेड़ होने वास्ते थोड़ा जहा टाइम तो लगना ही है ना जी।
1: टाइम बिल्कुल जी बिल्कुल, मेहनत
0: जी
1: करनी मैडम जी, मेहनत का फल भी नहीं पाउंदा ना पल्ले मेरी। ऐसे लोग भी हैं जिहड़े जंगलां च अग लगांदे फिर पेड़ पौधे होइयां मुक्की जांदे,
0: जी ये भी
1: ठंड पर
0: जी
1: चढ़ गया कोई आए ना कोई। जी जी
0: जी
1: क्यों
0: जंगलां
1: ना, इस समय दौर जिहड़ा असां अग्गी लगने का जंगलां च शुरू है आस्ता
0: जी
1: आस्ता।
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी ये तो सबसे गलत है ना कि यहाँ जंगलों च आग लगा दे, जेड़ा पशु पक्षी है तिना जो भी नुकसान पहुंचा दे ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: जी
1: तो नुकसान ही लेकिन लोग नहीं समझते ना, आजकल धर्मी लोग बड़े हैं ना
0: जी जी
1: जी। अपने
0: सही
1: फायदे तो है भी जंगल से चीड़ा ले वो पे उन्हें चलने फिरने मुश्किल
0: जी
1: होंगी नहीं। हाँ
0: जी जी जी
1: जी तो
0: जी पर
1: मैंने गाना सुनना आज एक ना गंभीर देवी का नहीं है बे, कपड़े धोवाने मुंह है साबुन मुक्की गया वो
0: जी,
1: वाला
0: कपड़े धोवा छम छमरों में
1: ना ना, कपड़े धोवाने वो हेठ साबण गया मुक्की थोड़े रह
0: जी
1: गया थोड़ा।
0: जी जी जी नींबूए दे बाग हैं
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी जी जरूर जी। तुहां दी जेड़ा फरमाइश है
1: जी
0: से तुहां तक पहुंचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
1: थैंक यू मैडम जी।
0: जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, कर देना अपने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीत कन्ने, तो सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा।

0: आहबुलादीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने तुहां सारे सुनिया ई प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत। इसी शुरुआत कने अगर अहां मौसम दी ओर अपनी जेड़ा नज़र है से दौड़ांदे न, जेड़ा मुख्य तापमान है कने जेड़ा स्थिति है से क्या रहने वाली है। अधिकतम तापमान दी गल करिए ता लगभग जेड़ा तापमान रहने वाला है से 3 डिग्री सेल्सियस रहने दी उम्मीद जेड़ा है से है। न्यूनतम तापमान दी गल करिए रात इसमें दी जेड़ा है से 15 डिग्री सेल्सियस तक जेड़ा है से जाई सकता है। ता शुतो मौसम दी जानकारी भी तुहां तक पहुँचाई थी है कने अगर अहाँ मौसम दी ओर अपनी नज़र लगांदे न तो कुथी ना कुथी थोड़ा जेड़ा गर्मी वाला एहसास है से अहाँ जो दिखने जो मिला है तो अपना जेड़ा ख्याल है से तुहां रखना है। मौसम तो कोई भी है, हर टाइम अहाँ यही बोलते न कि मौसम दे अनुसार अपना जेड़ा ख्याल है से ज़रूर रखा, क्योंकि मौसम दे अनुसार चलना हाँ वास्ते ज़्यादा ज़रूरी होंदा कने मौसम दे अनुसार अगर हाँ अपना ख्याल रख दे ना ता तो और भी अच्छी जेड़ा गल है। कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने अहाँ कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, क्या
0: जी ठीक ठाक हैं जी? तो हमारा स्वागत है जी रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हंदा ना किया है जी?
1: सुकड़े ते बोला भी माया
0: जी, सुकड़े ते बोला दे माया जी।
1: हाँ जी
0: जी माया जी, सुकड़ा है कितनी की गर्मी हो यही?
1: गर्मी खरी है
0: जी। अच्छा ठीक ही है।
1: हाँ जी जी
0: जी जी, चलो मौसम दे अनुसार अपना ख्याल भी रखना है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, कई बार होंदा ना कि यहाँ कम में लगे हो रहंदे कने यहाँ मौसम दी ओर अपनी नज़र नहीं लगांदे या अपने स्वास्थ्य दी ओर नज़र नहीं लगांदे तो कुथी ना कुथी यहाँ दा जेड़ा स्वास्थ्य है से बीमार पे ही आंदा ना जी। जी जी
1: भगवान का नाम करना है थोड़ी मीठी वाणी है सुन ली है बड़ी अच्छी है।
0: जी जी
1: जी
0: जी ता माया जी जी,
1: हाँ जी।
0: ता आज तू हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: इना फुल्ला ना तोड़ मालना
0: जी, इना फुल्ला ना तोड़ मालनी, इना फुल्ला च नाग वस देना जी। बड़ा प्यारा गीत है कने जलू हाँ फुल्लां दी ओर दिखदे ना तां तिदा सौंदर्य बड़ा अलग हुंदा ना जी।
1: हां जी, फुल्लां दे किनारे दिखदे सब फुल्ल बड़े
0: जी जी, हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद हुंदी ना जी।
1: हां जी,
0: जल वहां अपने घर च थोड़ी देर सजावट करदे न या फुल लगांदे न तां जो भी अच्छा लगदा है।
1: हां जी
0: जी जी, तो जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे न जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी।
0: तशो तो तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, तुह सारे भी इस कार्यक्रम कन्ने जुड़ी सकदे। जुड़ने वास्ते जेड़ा हंदा नंबर है से तुह सारे नोट करा, नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा, नंबर मैं तुहां तक पहुँचाई तय कने अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कने जुड़ी चुके हैं। हेलो हेलो
2: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी कुंदिया गाना सुनने जी तुहां?
2: जन्नी बॉडी फिल्म का
0: जी। कुंदिया
2: पाड़ी पाड़ी
0: जी, पाड़ी गाना कुंदिया सुनने जी तुहां?
2: जन्नी
0: जी, तुहां कुथों ते बोला दे कने तुहां दा नां की है जी?
2: चंबे
0: जी। कुथों ते?
2: नाचते चंबा ही
0: जी। अच्छा चंबे ते बोला दे जी, जरूर तुहें पहाड़ी गीत कोई भी सुनना है तुहां?
2: अंजी
0: जी, जरूर जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਤਾਓ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਪਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਜੋ।

0: कान में दशमलव 2 MHz पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कने तुहा सारे सुनया ए प्यारा दिया भजन प्यारी देई फरमाइश ना कर मान बंदिया ता श्रोताओ हमेशा हांजू जिड़ा याद रखना चाहिदा याद क्या रखना चाहिदा तुहां सारें जी पता है कि जिंदगी दा जिड़ा सफ़र है ना स्याह वास्ते बेहतर खास है अगर हाँ अपने अंदर अभिमान रख देन या मान रख देन तो कुथी ना कुथी से अहंदे रिश्तियां पर भी जिड़ा है से प्रभाव जिड़ा है से रख दे या अहां अपने कोई भी काम कर देन कने अभिमान कने कर देन तो कुथी ना कुथी से अहां जो सफलता दी ओर बिल्कुल जिड़ा है से नीले करी जांदा है तो रिश्तियां च अगर अहां गल करन कि अहां हमेशा ही बोल देन कि प्यार भावना एक दूसरे अंदर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर अहां कोई भी काम कर देन या अपने अंदर अभिमान रख देन तो अहां कुथी ना कुथी जिड़ा रिश्तियां च प्यार भावना है से नहीं दिखी पांदे न हर कोई यही चाहता है कि जिंदगी दा जिड़ा सफ़र है से प्यारे ने बीता है ईमानदारी ने बीता है अच्छाई कन्ने बीता है तो हमेशा मान सम्मान करना भी हाँ वास्ते ज़रूरी है कन्ने हमेशा अच्छे जिड़ा विचार हैं से अपने अंदर रखना भी हाँ वास्ते ज़्यादा ज़रूरी है तो चल दे न अगले जिड़ा श्रोता न तिना ते पुछ दे न से कुथू ते बोला दे कन्ने तिना दा ना क्या है हेलो
1: नमस्कार मैडम जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च जी तुहां अपना परिचय जिहड़ा है से जरूर दे दें जी
1: आ धर्मशाला ते बोलो
0: जी धर्मशाला ते विजय जी बोला दे
1: जी जी मैडम
0: जी ता विजय जी आज तुहां क्या कामकार छेड़िया क्या हाल चाल है धर्मशाला वासियां दे
1: अरे बस रोटी बैठिए सब
0: जी अच्छा भिंडिया दी सब्जी बनाई हो कने फुलके बनाए होने जी जी ता लस्याड़ियां दा नवा नहीं लगाया तो हां
1: कल नहीं लगाई वाली
0: जी जी जी ता विजय जी और नई ताजी धर्मशाला कितनी की ज्यादा गर्मी है
1: मैडम ये दू तो ज्यादा हो दी
0: जी ज्यादा हुई हो ना जी
1: ज्यादा टेंपरेचर
0: जी जी जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: कुंदिया सुनाई जा कुतुबे
0: जी कुतुबे आया रून छुनवा
1: जी जी
0: जी जी जरूर तो हाँ तक के गीत हाँ पहुँचा दें जी तो हाँ थोड़ा देर इंतजार करा
1: ठीक है मैडम जी
0: जी ए है तो हाँ सारे अंदा अपना रेडियो गुंजे

0: वन धर्मशाला। तो हसारी कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक कन्या जहाँ जेड़ा गल बात करा देन से करा देन कि अभिमान कने मान जेड़ा है से अहाँ जो हमेशा बड़ी जेड़ा सीख है से दे करी जानदा है। अगर अहाँ अपने अंदर अभिमान रख देन कने तो हाँ सारे ही ये गीत भी ज़रूर सुनया है कि ना कर मान बंदिया, क्योंकि अगर अहाँ जिंदगी दा सबर सफ़र जेड़ा से बेहतर बनाना चाहते न तो अपनी जेड़ा सोच है ना से अहाँ जो हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, अच्छे जेड़ा विचार है ना से हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि अहाँ दे जेड़ा माता पिता न सभी अहाँ जो यही सिखाते न कि बड़े दा जेड़ा मान सम्मान है से किस प्रकार करना है या छोटे दा जेड़ा मान सम्मान है से किस प्रकार करना है से सब कुछ अहाँ जो सिखाता है कन्या किसी की मदद किस प्रकार करनी है। अगर अगला जेड़ा व्यक्ति है से तुझ जो अहाँ की मदद की जरूरत है तो अहाँ किस प्रकार तीसरी जेड़ा मदद है से करी सकते न तशो तो थोड़ा दी आज्ञा बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न क्योंकि फरमाइशा का जेड़ा दौर है से थोड़ा दिया ज़्यादा है कने समय जेड़ा है से अपनी रफ्तार लेकर जरूर चलिया है। कार्यक्रम च समय जेड़ा है से हो 2:30 कने आधा घंटा जेड़ा है से हल बचे है तो फिर ते तो हम जो ले चलते न फरमाइश दी ओर।
1: ऐसे में उसका पति भी तो घर नहीं है।

0: बहुत सारे ही सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अह जो आई हुए शाहपुर ते कने तिना दा नाम है रणजीत जी, तिना तक अह ये गीत पहुँचाया कने तुहां सारिया भी इंजॉय किया। कने फिर त्यां अपना जिहड़ा गलबात है से तुहां तक पहुँचाते न, कने तुहां सारे भी मेरी जिहड़ा गलबात है ते अजो भी इंजॉय करा दे होने न, कने जिहड़ा तुहांदियां फरमाइशां न तिना जो भी जरूर जिहड़ा है से इंजॉय करा दे होने न। शुरुआत अहां करा दे कि जिहड़ा शुरुआत जिहड़ा है से अहां हमेशा एक अच्छी सोच विचार कन्नै करदे न, जिहड़ा अहां दे अच्छे सोच विचार हैं से अहां जो हमेशा सफलता दी ओर लेकरी जांदे न। सफलता ताई अहां करी पांदे न जलू अहां अपने अंदर सकारात्मक जिहड़ा विचार हैं से रखदे न। तशो तो गल अहां करा दे थे अभिमान दी, मान दी, क्योंकि अगर अहां घमंड कर दे ना कुथे ये घमंड जिहड़ा है से अहां जो अगे नहीं बढ़ी पाना, यानी कि अहां अगे जिहड़ा है से नहीं बढ़ी पांदे ना कुथे ये जिहड़ा है से। अगर अहां तुहां सारे गाना भी सुनिया था कि ना कर मान बंदिया, पर अज कने दौर दी अहां गल करिए तां हर कोई जिहड़ा है से हमेशा अपना ही फायदा जिहड़ा है से दिखता है। हाँ, अपना फायदा जिहड़ा है से पहले दिखते न, कने अगला जिहड़ा व्यक्ति है चाहे उस जो नुकसान होवे चाहे कुछ भी होवे अहां जो जिहड़ा है से कोई फर्क नहीं पौंदा। रिश्तियां दी अहां गल करिए तां रिश्तियां च भी जिहड़ा है प्यार भावना बिल्कुल काम है, या अहां जिहड़ा सबर है से करना नहीं जानते, जिहड़ा अहां दी जुबान पर है से अहां एकदम जिहड़ा है से बोलिंदे न। हमेशा अहां यही बोलते न कि जिहड़ा अहां दे शब्द हैं ना से अगर अहां सोची समझी करी बोलते न, या 100 बार पहले सोचते न फिर अहां से शब्द जिहड़ा न बोलते ना कुथे ये शब्द अगर अगला व्यक्ति सुनता है उस जो इन्हां शब्दां ते जिहड़ा से बुरा भी नहीं लगना चाहिदा, कने से अच्छा जिहड़ा अपने चेहरे पर जिहड़ा स्माइल है से जरूर रखें, क्योंकि इस शब्द जिहड़ा से अहां जो एक दूए ते मिलाई भी दिंदे न, कने एक दूए ते दूर भी करींदे न। तो अपने जिहड़ा शब्द हैं से हमेशा अच्छे रखा, कने कोई भी काम में अगर अहां करदे न कने अभिमान करने दिस कम्मे जो करदे न तो कुथी न कुथी ये भी अहां जो एक बड़ी जिहड़ा सीख है से दिखने जो मिलती है। समय दी गल अहां हमेशा करदे न, कुदरत दा नियम है, समय दे अनुसार चलना भी अहां वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। समय दे अनुसार अगर अहां चलदे न जिहड़ा वक्त दा पहिया है ना से अहां जो बड़ा कुछ सिखाईंदा, जिहड़ा वक्त है ना से तुहां सारे जो पता है कि अगर वक्त दे अनुसार अगर अहां चलदे न तां बड़ी अच्छी गल है, अहां सफलता भी हासिल करदे न, अपनियां दा जिहड़ा प्यार है सभी अहां आपू तक पांदे न, कने इसी प्रकार अगर अहां ज़्यादा अमीर हन या ज़्यादा गरीब हन, कई बार होंदा ना कि ये जिहड़ा अहां दा मन है ना से बड़ा चंचल है, बड़ा कुछ सोचने पर जिहड़ा मजबूर है से अहां जो करींदा है। तो यही है कि जिहड़ा वक्त दा पहिया है ना से अहां जो अमीर ते गरीब भी बनाईंदा है, कने राजा ते जिहड़ा है से फकीर भी अहां जो बनाईंदा है। तो हर चीज़ दा जिहड़ा ध्यान है से अहां जो रखने दी जरूरत है। अपनिया माता पिता दा जिहड़ा से मान सम्मान हमेशा करा, बड़िया दा मान सम्मान जरूर करा, कने जिहड़ा बुजुर्ग हन तिना दा भी मान सम्मान जिहड़ा से जरूर करा, कने अगले जिहड़ा श्रोता न तिना जो जोड़ देन। हेलो,
1: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बिल्कुल, स्मालक दी मौज है महाराज
0: जी। मौज तो चाहिए ना जी।
1: बिल्कुल, बोल दे सारा के लिए उस माल की याद करना क्या है, बड़ी जरूरी है
0: जी जी। पर आज के दौर दी हां गल करिए तो कुथी न कुथी ये चीज बड़ी कम है ना जी।
1: बिल्कुल, हां जी हां जी, बिल्कुल जी
0: जी जी। तो तुहां मेरी गल बात जरूर सुनी ली होनी है जी।
1: महाराज जी, मैं बयान 5 बजे लगदा सुनना बड़िया बड़िया सोहनिया गप्पा सुनांदे जी
0: जी। अच्छा, 5 बजे ते शुरू करींदे तुहां रेडियो सेट सुनना?
1: अपना जेड़ा रेडियो टाइम रखे मैं 2:30 बजे उठी जांदा नी
0: जी, कने
1: फिर मैं 5 बजे रेडियो लगांदा
0: जी,
1: फिर अपने गाने भक्ति दे गाने सुनने
0: जी जी,
1: फिर मैं

0: करी
1: जी
0: फिर मैं इस
1: जी
0: बात
1: जी
0: लगाने गए साढ़े 4 बजे लगाने में बोल देने सुनने की मजा आंदा कने गल्ला सुनिए सब याद रहनी है
1: जी जी
0: कने अच्छी अच्छी गल्ला तो समंदर महाराज जी थे कने
1: जी
0: आहां जब खुशी होंगी बोलिया नहीं चल बोलिया एक वृक्ष ये ठमुआ थल बही करी बहना बोलिया होना हाँ बोलिया बड़ी ये ठमुआ बहना पल के जेड़े जी संत मुनि होंगे संत महात्मा है रुखे नीचे बहते हे कने अपना ध्यान लगाई कर बहते उस परमात्मा के बखे है ऋषि मुनि बनते थे ना ऋषि मुनि बोलते हे कौन भी सा टाइम है कई है ना जनाब सा अपने आप यो ये नहीं क्लियर नहीं करते कि हाँ ये कम कर दे कने इसी हिसाब ने संसार चलिया कई जगह दिखा मैं एक बार मैं देहरादून गया जनाब देहरादून गया तो एक बड़ा प्लाट देहरादून के उपर बड़े बड़े मतलब सरदार बैठे हो अपने हेठ अंबा हेठ मैं भी बेही गया ना समाधि लाई के अद्धे अद्धे घंटे बाद दिखन सुन मैं भी गया तुझे बेही गया घंटे बाद जाग गया है तिन्नी मंजिल पुछे माल लिया कुछ दे रहने वाला मैं इं दसिया मैं तो हमें बड़ा सोहना कम कर दे बोलिया ये संत महात्मा ये सीख है बोलिया किले करी बैठ उस माल के बखे ध्यान लगाना अपने देवी देवते के बखे ध्यान लगाना ये सब कुछ अहें दिंदे बोलिया पर अहें ना ये सुनाइया नहीं कर दे कने सवाल अहां ये ना ये सुनाइया करने तो अहां बोलिया कई दुगड़ा अच्छे ने हरेक चीज दे अच्छे ने बोलिया जी महाराज जी
1: जी सही है ना कि पेड़ पौधे अहाँ वास्ते कितनी ज्यादा जरूरी है
0: बड़े जरूरी महाराज
1: जी अहाँ जो समझ ता होंदी है जालू अहाँ जो अहाँ अपना फायदा निकालना होंदा ना जी
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी दिखा होना कणका दा टाइम लग गया था ना जी
0: हाँ
1: हाँ पेड़ा जो ढूंढा दे थे पटिया च की कुथु दिया पेड़ है कने कुथु दिया हाँ पेड़ा दी जेड़ा छाओ है से लैन दे ना जी
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी फिर बाकी कोई भी यहाँ काम कर दे उन्होंने लसन प्याज जी ऐसे भी पुटना शुरू हुई है ना जी
0: जी
1: जी तो तालू भी यहाँ सोच दे ना कि उन गर्मी दा मौसम है ता ठंडी ठंडी हवा जी ऐसे अहन जो चाहिए दी होंदी ना जी
0: जी महाराज
1: जी ना इंसान जेड़ा ऐसे गर्मी सहन करी सकदा ना ठंड सहन करी सकदा ना बरसात जेड़ा ऐसे पिछली बार भी इतना ज्यादा नुकसान होया था ना जी बरसात
0: महाराज
1: हर चीज हाँ मतलब खुश नहीं है नी अगर गर्मी होंगी तब यहाँ खुश नहीं सर्दी होंगी तब यहाँ खुश नहीं मतलब मौसम कुदरत का नियम है ना जी कुदरत दे अनुसार चलना तो हाँ जो भी चाहिए ना जी
0: हाँ जी चलना चाहिए जी
1: जी जी कने कुदरत दे नियम जेड़न से बड़े निराले ना जी
0: हाँ जी
1: जी
0: जनाब टाइम लगा खत्म भी होंगे आए लोग
1: जरूर जी अहां जो भी आना पौना तो साइड
0: बिल्कुल महाराज जी बड़ी खुशी है जी
1: जी जी
0: हाँ जी
1: सीता आज तुहंदा ना तो मैं नहीं पूछा पर तुहां जरूर दसी दिया जी
0: मेरा नाम जी हरदेव है मैं डाडे दे रहने वाला जनाब
1: जी डाडे दे रहने वाले हरदेव जी
0: जी महाराज
1: जी ता डाडे कितनी की गर्मी है
0: बड़ी गर्मी है जनाब इस वक्त का
1: बड़ी ज्यादा
0: हाँ जी गर्मी है कने प्राण दे बदल आई है ना
1: जी जी
0: गर्मी बड़ी भारी है
1: जी
0: हाँ जी
1: आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके जी
0: गीत जनाब तो हाँ बाबा बालक नाथ की कोई पेंट सुनाई दिया जी नहीं
1: जी बाबा बालक नाथ की जेड़ा सहर है तो हाँ करनी है ना जी
0: जी महाराज
1: जी गाने दे थ्रू यहाँ तो हाँ जो बाबा बालक नाथ की शहर जेड़ा से जरूर करवा दें जी
0: अच्छा महाराज जी
1: जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा
0: धन्यवाद महाराज जी
1: जी ताशो ताऊ वहाँ भी चल देन थोड़ा दिया घूमी फिरी ओन देन घूमना फिरना भी जरूरी है पर इस टाइम करी लैन देन थोड़ा दिया पहाड़ों का जेड़ा नज़ारा है उस जो दिखी लैन देन तो चल देन सुन देन इस प्यारी दिया फरमाइशा जो

तो श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अहाँ जो आयु वे चंबे ते तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कने जरूर तो हाँ हिमाचल दी जड़ा शहर है से जरूर करी ली होनी है कने जड़ा पहाड़ों का नज़ारा है से बड़ा ही प्यारा है। फिर इतिहा थोड़ा दिया गया वर्दे न क्योंकि समय जड़ा है सियाहाल थोड़ा दे है कने समय के अनुसार अगर वरना भी हाँ वास्ते जरूरी है। चल देना सुन देना इस प्यारी दिया फरमाइशा जो दर्शोताओं इस गीत की फरमाइश अह जो आई वे माया जी दी कने से रहने वाले न सुकड़े ते तिना तक कहाँ ये गीत ते भजन पहुँचा देना तुह सारे भी।

श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने फिर यहाँ थोड़ा दिया क्या वर देना कहने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

विजय जी की फरमाइश च तुह सारे गीत सुनिया कने से रहने वाले न धर्मशाला ते थोड़ा जिहा और अगे बढ़ते न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचाते न।

कानवी दशमलव टोमी का हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने दर्शो तो इस कार्यक्रम का जिरा सफर है से थी संपन्न होंगे तो हाँ सारे ही अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति कन्ने जिरा तो हाँ फरमाइश सुना देने इस गीत की फरमाइश अहां जो आई हुए डार दे कने तिना दा नाव है हरी जी तिना तक हाई गीत पहुँचाया कने तिना इंजॉय भी किता होना है कने तो हाँ सारे ही अपनी रेडियो दोष रशि

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091710917091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बी ए एम ए की डिग्रिया है सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-1811-1701-9171। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
10: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ये ट्यून कर रो रहा हूँ तू हो गए तुंदा अपना आर से वेडी जो कि सचिन कपूर हाजिर है कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा। क्या हाल चाल ने श्रोतो तुंदे, उम्मीद करना तुंदे हाल चाल ठीक बुने, खरे बुने, खुश बुने, तंदुरुस्त बुने ही न। तो कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा में तो सब श्रोता गण सो जरूर कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो जरूर होने सकते हैं न। 7018889 पर तो कॉल कर सकते हैं श्रोता। और इसी सो गया हूँ तुसू दसना चाहता कि कुछ एक ऐसी खास जानकारी तू हो गया है ज़रूर शेयर कर ले, साझा कर ले, जो कि इंदे धर्मशाला रही हिंद जी की अक्सर करते हैं छो। तो सभी पहले तो मुझे लगता धर्मशाला रहा मौसम के सो जानी लेंदेन इस वक्त धर्मशाला रहा मौसम के सो क्या बनता है ना। हालांकि पिछले दो दिन थों कि ऐसो काफ़ी ज़्यादा गर्मी की ऐसो धर्मशाला में बच्चू कर दे आशो तो और बुंदी भी आ धर्मशाला में नो डाउट फिर ही मौसम खराब दसू कर दिन कि 22 तरीक हो गया ऐसा मौसम आके मौके फिर खराब होना है। लेकिन फिलहाल के ऐसो गर्मी का दौर गर्मी का एहसास किया सो धर्मशाला रे मनु बच्चू कर दे इस समय 26 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के ऐसो तापमान है शो तो। और न मेरी गल करूँ नमी की ऐसो 25% जतियों अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बल दे।

25% क्या असो धर्मशाला मंच हाश होता हूँ। यह मौसम भी जानकारी जो क्या है तुसु तक पहुंचा या श्रोताओं हने जानकारी तो है जरूर असु के किया तो है भी साझा कर सकते हैं और असु तो तुसु तक की असो अन्य जानकारी पहुंचानी हिन बहरहाल 7088 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता के सो कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो सकते हैं। तैयार लेकर चल दे तू सभी श्रोताओं इस आगाज रियोर और आगाज कर दिन कार्यक्रम रा इस गीता सो के गीता रा बोल हिन श्रोताओं ढोला जो कि आशा ठाकुर द्वारा किया सो गुनगुनाएगा चूरा।

শত এফ এম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর ভিডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এসে বিয়ে টিউন করো আর কার্যক্রম ইস ওয়াক্ত ইন দি আপনি গপ্পা গেনে সো বিলকুল লাইভ চল রহে তো ইনতে ভিডিও সেট মাতা আইয়ে জি কার্যক্রম যো হগো বড়ন্দে তো এসে বন রহে নে সময় আর জে সচিন কাপুর সোগে আর গুঞ্জ আপনে বন রে তা হাই হা আর হমেশা রহনে তা শ্রোত জুড়ে সকদেন জি কল করে সকদেন আপনা পছন্দিদা গীত হুনে বাস্তে আপনে ক্ষেত্র রে কোই ভি আপডেট কি আসো দিনে বাস্তে লেকিন আপডেট কি আসো তো সো ज़रूर अच्छी बो खासी बो और आजकल तो वह भी चुनावी वेला मतलब पंचायत में गया सो चुनाव भूने हिन 26-28 ते 30 होता अपना अपना जोर किया सो सब ये लू रहा पर बहरहाल कार्यक्रम जो है आगे बढ़ते हिन और कार्यक्रम मंच तू सभी हो लेकर चल दिन कुछ एक खास जानकारी रही और तशोतों आपदा में मौत पर अवे मोलना 10 लाख रुपया अगर आपदा में मौत बंदे हा तो केंद्र सरकार के आ सो बल्लू कर दे 10 लाख रुपया के आ सो मोलना 10 लाख रे मदद के आ सो मोलने हा मन लिया अगर केंद्र सरकार के सो बदलना गच्छू कर दे राहत नियम राहत दिच्छू कर दी है सड़क हादसे में मौत पर भी किया सो 10 लाख मदद किया सो मोलना है घर लूटने पर 1.3 लाख ना बल्कि 4.3 लाख री राशि किया सो मोलने हैं अगर घर लूटे गंदा था जी की सरकार दिन दे भी आशा तो गा मैं पर हानि अगर गाय और मैं पर हानि बुंदे आए का सरकार मरी मुकी गंदी ने तत्तिया पर किया सो तो सो मालिक जो 37 जगह किया सो 73,000 रुपया किया सो मोलना हा राज्य संघ चर्चा कर हाँ सभी राज्य हो गए किया सो चर्चा करे करे रिफिल मेन्यू किया सो तो सो एनडीपी व्या किया सो रिफिल मेन्यू किया सो तैयार बुना हा शो तो और गृह मंत्री री मंजूरी मिलते ही किया सो जनता रा बुना हा बड़ा फायदा ता बिल्कुल ले बड़ी मोटी मोटी गल के इन श्रोतों सो में तुसो की साझा करी कि हिमाचल समेत पूरे देश रे वास्ते कि सो आपदा रहा राहत कि सो आए हा तथीमा फेर बदलाव कि सो हुआ हा और जनता रे हित में कि सो फेर बदलाव हुआ हा श्रोतों अब आपदा रे दौरान किसी भी व्यक्ति जो कि सो मृत्यु पर पीड़ित जो 4 लाख भी जगह के सो 10 लाख रुपया के सो मोलना हा हिमाचल में गयो कि सड़क हादसे भी बड़े बंदे ने आपदा था भी किया सो बड़े आपदा बंदे हिन सो तो इसलिए सड़क हादसे में मौत री सूरत में किया सो 10 लाख रुपया मिलना हा इस तरह सो तो घर लुटने पर घर टूटने पर किया सो 1.3 लाख रुपया ना बल्कि 4.3 लाख रुपया किया सो मिलना हा और इस प्रकार रे के श्रोताओं सो थोड़े करी फेर बदल के न सो हुआ हिन बहरहाल कार्यक्रम में जो और भी बहुत सारी इस समय जानकारी हिन जो तुस हो गया है असो शेयर करनी हिन श्रोताओं आइया लेकर चल दें तू सब भी जो वेड़ी गुंजन धर्मशाला री किनारी तो है ही नहीं लेकिन अक प्यारे दे गीत तारी किनारी ये गीत तुस हो गया सो जरूर तुसु असू शेयर करना है साझा करना है श्रोताओं लेकिन तो सब श्रोता इस समय हुण कर दिन रेडी गुंजन और हुण कर दिन अपना कार्यक्रम तो जरूर कॉल कर सकते हैं 7081 8119 पर नंबर अक मौके फिरे 7081 8119 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते ना अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो असो की साझा कर सकते हैं कजो के तुम तो अपना गादा कार्यक्रम हा शो तो फिलहाल लेकिन चलते हैं तू सब भी जो इस प्यारे दे गीत तारी किनारे बने रहे जुड़े रहे असो सोगे

0: শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগা হার্টস পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এস বি টিউন কর রো আর সচিন কাপুর সোগে কার্যক্রম এস ওয়াক্ত ইন্দি আপনি গপ্পা হোগে তো হ্যায় বন রেন তো হ্যায় জুড় রেন তো হ্যায় হুনু করদে হিন ইন্দি আপনি গপ্পা জো তাই এ কার্যক্রম জো আগে বড়েন্দে হিন আর বিলকুল ठेर है एम सी वे चुनाव के नगर निगम रे चुनाव के श्रोतों सोता बच गए है ना। अब जो रिजल्ट इन ना सोता ठेर इंतजार तू सब भी होना हाँ। अब बारे हाँ पंचायत रे ता अजय क्या है पंचायत चुनाव है कार्यक्रम चलो रहा जति अंदर है जितने भी प्रधान उप प्रधान पार्षद बी डी सी सदस्य क्या सो खड़ रहे उम्मीदवार क्या कैंडिडेट क्या सो खड़ रहे त्यारे बारे क्या सो यह जानू करते हैं और यह तीनों अप्रोच भी करू करते हैं और तुसो भी किया सो दसू करते हैं श्रोताओं की कस प्रकार होगी यार समझ हा कस प्रकार होगी किया सो अपनी पंचायत जो लेकर सूझबूझ रख देन अपनी पंचायत जो लेकर किया सो समझ रख दे चलिए कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच अगले श्रोता जो क्या सतुसु की जोड़ दें श्रोता। नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्कार जी सचिन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते कुण बलुंदेन और कड़ी थो बलुंदेन जी
1: ए तपोवन
0: अच्छा तपोवन तपोवन ठीक ठाक रे तपोवन हाँ
1: जी हाँ जी वेदराम
0: अच्छा सफेदो राम जी कौन देने की थोड़ना दसू
1: ओ सोना जड़ा खरिया कमाले खोटियां खानियां बंदिया दो रोटियां
0: क्या बात है। और सफेदो राम जी कदे गो आज कना दिन तुंदा
1: दिन ता है खरा जी पंचायत वाले ना ओदे वोट है
0: हां जी हां जी
1: पंचायत वाले ने जोर पई है ना।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल पई है
1: हां जी
0: चलिए ठीक है जी
1: और
0: बढ़िया जी बढ़िया जी पंचायत आला है क्या उम्मीद कर दें तो है कि जो पंचायत आला है जो प्रधान उप प्रधान सो किना व्यवहार किया सो जनता होगी रखन
1: वो तो रखने कितने तो आठ तो अपन पर आने खड़ी है।
0: चलो कोई गल ना आठ घड़ी है कर अगर कर 10 12 भी 15 भी
1: हां जी पांच पांच प्रधान
0: अच्छा
1: तने वोट है 1200
0: हां जी
1: वोट मिल जाने
0: जी जी बिल्कुल चलिए ठीक है जी
1: ठीक है
0: लेकर चल दें तो सुई तो तुंदे पसंदीदा गीत तरीके नारी
1: ठीक
0: है नमस्ते जी। शोधो वाकई में ये गल जो इंगे बल्ले थी ओम कंटिन्यू जरूर करता कि इंसान के सो कम करने वाला बिल्कुल वो असूले बहुत सारे कैंडिडेट किया सो इच्छु करते हैं चुनाव संवाद में और गलबात इन होगी करी करी हब जो भी हूँ ऑटो ही है बस ता बल्लू कर दिन की सरकार है अगर ते करो तो असू के असू ही करना सरकार ही करो तो असू ही करना। चलिए सरकार तक लग ला कि मतलब मदद कर ले लेकिन अपनी तरफों पंचायत

0: इतना अपना बजट भी किया सो भूना चिंता, जो कि पिछले अगर वैसे तो बजट अपनी पंचायत भी खराब हुआ है ना, बजट बुना तो चिंता, लेकिन क्या पता भाई बुना कि ना बुना नई पंचायत तक है ना, सो बनी न कुछ एक नई पंचायत तक है सो जुड़ी इन शो तो। और है तो ये चाहते हैं कि इंसान की सो काम करने आ वाला बुआ हर वर्ग रे की ऐसो गल होना, चाहे सो गरीब वर्ग आ चाहे सो अमीर वर्ग, हर वर्ग रे गल होना क्या सो प्रतिनिधि रा काम हाँ शो तो। बहरहाल अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड है, नमस्ते सी।
1: हेलो, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल चाल?
1: बस बल्ला खरे ना।
0: बहुत बढ़िया जी, करे लगुरन कैलूरा कमाना खून बलुंदन और करी थम बलुंदन।
1: बुलंदे दाड़ी नो ते पकड़ी चारूंडे
0: अच्छा, सुमन जी और सुमन जी नविता जी।
1: नेता जी क्या था, वोट बढ़िया
0: अच्छा
1: थे, रिजल्ट निकलना है।
0: हाँ, रिजल्ट बिल्कुल निकलना जी, 31 जो निकलना रिजल्ट बिल्कुल।
1: हाँ
0: क्या चांदन की जिस यो तो है वोट पाओ सो जितने के अच्छा, और जितने करे क्या कुछ गुण की ऐसो तो है चांदन।
1: जी, और कमाने कमरे कमाना थे ऐसा
0: जो तुम द कमरे की छुरे थी ना कमान,
1: उम्मीद आ खरे खरे कम्मा करना फिर हम फिर बढ़ना।
0: अच्छा
1: करना था
0: चलिए ठीक है जी, ये उम्मीद है तुम्हें तो बिल्कुल तुम्हें उम्मीद की आसो कायम रहे है बे सब चंदन की, जो तुम्हें प्रतिनिधि जो जिन्हों तो है वोट पाओ, जो वोट पाई करी जितती करी इंदे ने सो जरूर इन चीज़
1: हाँ
0: पर की आसो फोकस करना, जो तुम्हें कम रही छुरे पेंडिंग काम तिन्या पर फोकस जरूर करना, और तिन्या कम जो की है सो पूरा जरूर करना
1: नागरा
0: जी।
1: जाना खोल कुंडिया
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, जरूर होना ले तो स्वीग
1: ठीक है
0: लेता
1: जी,
0: जी,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। चलिए श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही हिन, और आइया इंदे अगला श्रोता सोगी कनेक्टेड हिन पुस्तन कौन बोलूं देन। नमस्ते जी, वेड़ी गुंजन माँ स्वागत है।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, नमस्ते,
1: जी, ठीक ठाक हो? हाँ
0: बहुत बढ़िया जी, तो बल्ला तो ठीक ठाक न?
1: जी, ठीक ठाक जी। तो
0: अच्छा जी, कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन,
1: देते माया
0: सुकड़ा थो माया जी बल्लू कर देन।
1: जी,
0: और माया जी किधर चल रहा कम कार पहले था ये दसा?
1: ओमकार चलिया अपने अपने खिचे सारे पिए हुए ना
0: अच्छा,
1: जी,
0: और नोयता जी कुछ सुकड़े रे?
1: कोई नौ ताजी नहीं होना ली फिक्र लगना पहले परसों फिक्र पता जैसे कौन चले न कहना क्या उसका है जाना है लोटा भी वारे तो। हाँ
0: अच्छा,
1: जी ठीक है ना,
0: 30 तारीख तुंदे वोट तो 30 जो 30 है जो होना है ना जी।
1: हाँ जी ठीक है।
0: अच्छा तो तुहे भी अपने प्रतिनिधित्व किया सो क्या क्या समझ रख देन तो है, और क्या चंदन की तुंदा प्रतिनिधि जो चुनी करे अय्या सुख दे बोवा जनता सोगे, क्या सेरा रवैया बोवा जनता सोगे।
1: करने वाले हो ना गरीब गरीब लोग
0: बिल्कुल,
1: जी,
0: तक चलिए उम्मीद है भी है कर दिन है नहीं कि पहले 5 साल तू सुले, मतलब पहले 5 साल पहले पहले तू सुले हाथ जोड़ी ले, और बाद तू सु हाथ जोड़ी करके सो काम कराना पे है ना है
1: तो जोड़ी करता चल दे ना, पर भी बात को तो सुनाई कोई नहीं होती ना, कोई ऐसी जरूरत पे या कोई काम पे या था ना
0: हाँ
1: सुनाई कर दे फिर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: चलिए ठीक,
1: बताओ गंदा हो क्योंकि रखना जेड़ा सारे गरीब गरीब लोग करे गरे भी किसान करे कन्हे सुनाई करे
0: बिल्कुल बिल्कुल, सब वर्ग जो कि सो आके सामान लेकर ही चल रहा, बंदा सो ही छोड़ना तुसु तुसु लेता
1: हाँ
0: ले
1: जी
0: मौका
1: सही
0: चलिए
1: ਹੋੜੀ ਗਏ ਮੋਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਜੋੜੀ ਚਲੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਜਾ ਗਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਗਏ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਾਂਜੀ
0: ਚਲੇ
1: ਹੋਰ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਲਾਡ ਲਈਏ
0: ਗੋਰਾ ਲਾਡ ਲਈਏ ਕੁੰਨ ਦੇਣਾ ਜੀ
1: ਗੋਰਾ ਲਾਡ ਲਈਏ
0: चला ठीक है जी गोरा लाड लिए हुनंदन तुसु गीत धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही तो बहरहाल लेके चल रहे तू सभी जो इस प्यारे दे गीतारी के नारी भजनारी के नारी और फिर तथों बाद सब फरमाइशा पूरी करनी

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप अगैन सो चल रही ना। यह कार्यक्रम मंच थोड़ा करी और आगू बढ़ते इन श्रोता और वाकई में ना इंसान जो मेहनत करना के सो बहुत ज़रूरी है और सही दिशा में मेहनत करना के सो बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं हम तो दसना चाहता कि सही दिशा में अगर मेहनत ना भोए तो बाद में आबे क्राइसिस कहन सो लग रहे नहीं ना। छोटे नी गल दसना चाहते जी तेल डीजल महंगा बुझेगा और है एरू कर दिन कि मोदी जी वल्लो भी कर दिन कि सोना के सो मत खरीदा है ना। और इस समय खाने रहा तेल और अब मुझे ये लगो करता कि शायद अब ये जी कोरोना रे टाइम में कि यह सिचुएशन आई थी कि वीकली वन टाइम कुछ दे दे सिस्टम की सो चली पैना कि तेल किया जी गैस भी गड्डी रह गई सो चली पी रहा। तो इस प्रकार हो कि सिस्टम आगू भी किया वह चली पैना हा सो तो हर चीज़ जा रहा जाए सो तेल रहा बो जाए खाने रहे तेल रहा बो जाए डी पूरा बो है ना। तो कुछ इस प्रकार रहे सिस्टम की सो जरूर चली पैना है ना। बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर सो के तो है हुनु कर देन और ता बल्लू करता कि सही दिशा में मेहनत करना की सो बड़ी जरूरी है। सो तो मेरा इस थो मेरा इस गला जो विलेट करने रहा जो मतलब बस हुई है कि अगर असूला पैसा दे लगे असो खरा हा अगर असूला पैसा खरा आता है चलो तेल आज 100 रुपये लीटर हुआ था 500 रुपये लीटर भी किए सो खरीद सकते हैं है ना। लेकिन असू जो मिडिल क्लास फैमिली वे बंदे बंदे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली तो बिलोंग कर दें तिन्या वास्ते 500 रुपया एक लीटर तेल खरीदना क्या सो बहुत मोटा पहाड़ है ना और बहुत मोटी गल है। खैर हर कोई ऐसा नहीं कि हर कोई किया सो सक्सेसफुल बुचगंदा या हर कुछ सिरे ले किया सो बाप दादा री जमीन जायदाद बंदे या बाप दादा रा के असो ना बुंदा है ना हर किसी लेने बुंदा कुछ शख्स के अनसो अपनी मेहनत सोगी भी अपने आशियाने के अनसो बनंदे हैं अपनी मेहनत सोगी भी किया सो घर परिवार जो चलंदे हैं। ता अगर इस तरीके रे क्राइसिस इंदे हैं छोटा हूँ ता जो इंदी मेहनत असो थोड़ी थोड़ी सेव करना भी किया सो जरूरी है ताकि अगर कोरोना ही स्थिति इंडिया अगर इस प्रकार रे फिर एक मौके स्थिति किया सो भारत में बन दे हा कजु के ऐसा बखूबी जानते हैं इनके इस समय किया सो युद्ध चल रहा अमेरिका और ईरान रहा जो कि बहुत ही घातक युद्ध है

0: कॉम्प्रोमाइज करी लेन देन है ना। और मुझे लगता था ठीक है रिश्ते के सो बन देन, अगर तो अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करें तो तड़ी रिश्ते के सो संभलिन देन, तब ठीक रिश्ते के सो बन देन और आगू चल देन। अगर तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना कर देन तो मुश्किल बंदा काम ता रिश्ते टूटे के देन शो तो बरा लेन दे। अगले शो तो कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
1: नमस्कार सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: और ठीक ठाक ना?
0: बहुत बढ़िया जी। तो बल्ला ठीक ठाक राजी बाजी कर लगुरन।
1: बहुत बढ़िया। तुम बोल रहे ना पंचायती के चुनाव वास्ते?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: कम करने वाले बंदे तो 100 च 5 ही मिलने।
0: बिल्कुल।
1: 5 ही मिलने सिर्फ।
0: चलो ये तो दस्तूर है बे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी।
1: क्योंकि यहाँ से देखी बैठे ना एक साढ़ा 15 साल रहे।
0: हाँ जी।
1: 31 साल।
0: अच्छा चलिए मेरे दिन क्या बंदा क्या ना बंदा है ना जी। अच्छा आज दिन तक ना हुआ क्या बात है?
1: कुछ नहीं हुआ। डीसी दिख रहे पूछिए।
0: अच्छा कुछ नहीं होया।
1: साड़ी पार्षद जेड़ी थी कार की मशहूर है तैं मौका दिखी आई।
0: अच्छा
1: हाँ श्री ओम प्रकाश प्रधान के तैं मौका दिखी आए।
0: अच्छा
1: कोई साड़ी पुल्ला दाल भी अगर कोई भी फैसला नहीं
0: तो इतने दिग्गज दिग्गज नेता भी खींच गए। अगर तुम दी खुला ही रहा है ना और फिर काम ना बच्चू करता था मतलब हाँ जी
1: पानी चाहिए
0: जी
1: है ना।
0: हाँ जी
1: ये चीजा है ना।
0: तो अऊ बोलूँ थू जी कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता तुंदी कुल्ला ही करे वापिस चले आए ना फिर काम ना बच्चू करता था क्या रीजन है कौन ना बच्चू करता काम मतलब ऐसा की है तहा कुल्ला अंदर की आके नॉर्मल दे कुल्ला रा निर्माण की है सोना बच्चू करता
1: ओए तो हां सब इससे अलावा कुछ और जाइए पर मंत्री अंत ना हाल जान ये
0: ता मतलब ये वाकई में
1: एक पार्टी का
0: जो की दाड़ी थो बिलोंग कर देन वाकई में इन ये गल की आई थिंक लगभग 6 महीने पहले या साल भर पहले भी बल्ले थे और इन ये दसो कि जग्गी जी की सो मौके हेरे करे चले आए जो MLA साहब ने इंदे सुधीर शर्मा जी सो मौके हेरे करे चले आए न यारे जो प्रधान इन जारे जो प्रधान इन तीनिया मौका हेरे लुआ लेकिन फिर भी कि आ सुक नॉर्मल दे कुल्ला रे निर्माण ना बच्चू करता था जी तुस वही लगू करता कि ता कुल्ला मतलब कौन ना बच्चू करता निर्माण मनु रे घर में ते या सो कुल या फिर क्या मतलब कुछ दसा सु अच्छा
1: रिपोर्ट कर जांदी।
0: अच्छा
1: तुम्हें बोल है मशहूर बोल है कोई आदमी नहीं अंग्रेजा ने टाइम में ही
0: है तो फिर क्या रीजन है इनकी कौन ना बनो कर दी
1: कोई कोई पता नहीं बजट ही नहीं दिया रहे कि कोई ठेकेदार ही नहीं खड़वा रहा कि कोई सब नहीं मारा
0: और कुल
1: कोई सब नहीं जा रही।

0: मतलब मुंजो भी वाकई में ये गल होने करी कि सो थोड़ा करे मेरा दिमाग भी टणकू हुआ कि मतलब सभी हो गल पता और कुल तो ये बल्लू कर दिन बड़े मशहूर कुल आए और फिर
1: हाँ
0: ये कुल्ला में कार है क्या बचू रहे तो है 10 साल क्या कार है बचू रहे है कुल्ला अंदर।
1: किस्सा है यार, एक बार जेडी बाढ़ आई थी ना,
0: हाँ जी
1: सारी मतलब चली गई ना, थोड़ा सुखा हो गया ना काम।
0: अच्छा
1: हाँ, जेडी जगह पे कुछ टेक्नोलॉजी चल रही ना,
0: हाँ जी
1: थोड़ी देर जारी हुई है।
0: अच्छा
1: बड़ा भारी फ्लैट आया था ना एक बार।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ, उस टाइम में भी ऐसा कूल है और उसी टाइम में यहाँ है ना रिपोर्टर ने चले आया जी देने तक।
0: हाँ जी
1: हाँ जी, देखो क्या होता हूँ नॉर्मल बनते नहीं मेरे मुँह कहाँ क्या बनता है।
0: चलिए जी, ये वाकई में बड़ी समझ वाली गल है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस बच्चू कर दी मंजो कि इंदे बड़े बड़े नेता जो ये गल पता फिर भी नॉर्मल दी गल रहा तो दसो जी तो दसो कि नॉर्मल ही किया सो बजट पास होना चाहिए और कुल किया सो चली पैने
1: साड़ी साड़ी इंडिविजुअल नहीं है ना ये तो मतलब लिखा ना
0: जी
1: क्योंकि तो दाढ़ी पे खरियाने पे करनी है दाढ़ी फिर सुको टप्पी जाना पार।
0: अच्छा
1: फिर चाकड़ वगैरह सारा सारी जिंदगी ने सब हल्ले होगी।
0: चलो ठीक है जी, मैं जरूर होनी कोशिश कर आऊँ जरूर है आप जो कोशिश करनो कि तुम दा नंबर किया सो जो इंदे एमएलए ने सुधीर शर्मा जी त्यारे स्टाफ तक नंबर पहुँचाऊँ और तीनों बल्लों की इमीजिएट ही किया सो तुसो की गल करी करी किया सो तुम दा निवारण किया सो करन और इतों बाद भी अगर ना बंदा तो फिर तो है लाइव में किया सो कॉल करी सकते हैं जी तो है अज करिया दो चूर महीने वेट करने बाद। ठीक है जी, धन्यवाद
1: धन्यवाद जी।
0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही बहरहाल इंदे अगले श्रोता सूगे कनेक्टेड है। नमस्ते जी, हेलो इंदे श्रोता कनेक्टेड तो थी है लेकिन डिसकनेक्ट कैन सो बुच गया है फिर इतों अगले श्रोता रहा कॉल हा जरूर कनेक्ट कर दें। नमस्ते जी,
2: हेलो नमस्ते भैया।
0: हेलो
2: हेलो नमस्ते भैया जी।
0: जी नमस्कार दीदी जी, क्या हाल चाल?
2: बस ठीक, आपने पहचान लिया होगा, बोलने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा फिलहाल था ना पहचानो जी, कौन बल्लुंदे और कड़ी तो बल्लुंदे
2: हम सिद्धवाड़ी से ही बोल रहे हैं और सिंगार
0: भी। ठीक है ठीक,
2: इसलिए अच्छा आप बोल रहे हो भैया कि पेट्रोल की कमी हो गई है।
0: हाँ जी
2: हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से हो रही है ये
0: कमी? कमी तना में बोलो, अच्छा तो है अपने हिंदी में गल करा हूँ अपनी ही डायलेक्ट में किया सो गल कर सकता इस कार्यक्रम में। कमी तना में बोलो जी कि 3 रुपये लीटर किया प्रति लीटर बड़े गोहा सो में मन वो थोड़ा करे अवेयर करो हा कि पेट्रोल डीजल और एक किस वजह बच्चू कर दी तो है बच्चू कर दें था जी आया जान दिन कि ईरान में किया सो तेल निकलता था ना जी और ईरान ईरान और अमेरिका री लड़ाई चल रही था हॉर्मोज किया सो बंद पियो रहा ईरान के सुख ईणा ना दे चुकर दा कसी भी शिप जो है ना तेल वास्ता है सो अटैक करे चुकर दा इस वजह थों कि सो इंदी बड़ी बड़ी कंपनीज सो किया सो दिक्कत वो चुकर दे और फिलहाल लाली इंडिया अंदर ये कि सो 3 रुपये लीटर के सो बढ़ो लेकिन बाकी जगह के बाकी कंट्रीज में कि सो तेल बड़ी तेज तरीके हो गए कि सो बढ़ो कर दा हा चाहे सो खाने वाला बोआ चाहे सो पेट्रोल या डीजल बोल।
2: पर इसमें तो प्रॉब्लम तो जो मिडिल क्लास के लोग है ना उनको आ रही है ना
0: बहुत ज्यादा,
2: उनको ही आएगी। वो तो बेचारे अगर काम करने के लिए भी जाएंगे तो उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम गाड़ी लेके जाएं या पैदल ले चले।
0: 101% और असु आज दिन तक पता ही ना लगो कि है इतना निर्भर बुची छूरन कस की भी कंट्री अंदर कि वाकई में गैस दिक्कत भी आई रहा कि तो है आज गैस तुंदे कॉपी में मतलब आज मुकेगी तो 25 दिन तुसो तुंदे दो भाई था तुसो क्या सो गैस ना मिलने
2: नहीं तो लोग इतना भी नहीं सोचते हैं ना कि मतलब जो चीजें पुरानी है उनको भूलना नहीं चाहिए कभी भी। आप देख रहे हो आजकल लोग इतने बड़े बड़े घर बना रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा थोड़े अपना अपने लिए रखना चाहिए कि ऐसे टाइम को आने से पहले वो रोक सकें उस चीज को और खुद भी सेफ रहें। और लोग भूल चुके हैं, बस वो सिर्फ ओनली गैस पे डिपेंड हो गए हैं और लाइट्स पे जैसे चलते हैं आपके आपके आगे कुछ भी उसी पे ही है। लकड़ियां वगैरह तो सब अब लोग भूल ही चुके हैं।
0: हाँ बिल्कुल, मतलब तुंदा कहने रहा जो तात्पर्य सो ये है कि जे पहले सूल मिट्टी रे तेल होंदा तो स्टोव बालदे थी है, गैस माफ कर चूल्हा बालदे थी है ना, छीड़ी लेंदे थी है।
2: हाँ जी बिल्कुल,
0: बहुत अच्छी गल तो है। बल्ले तुंदा शुभ नाम की है जी?
2: मेरा नाम रीना देवी।
0: मीना देवी, डाउन टू अर्थ गल की सो तो है बल्ले की वाकई में ऐसो इन चीजा पर के असो खासा ख्याल रखना चाहता तू की स्टोप हो गए की सो है, मतलब सो चीजा है बरकरार रख दे है ना। लेकिन ऐसे ने कई घर है रीना जी आज भी सो इस प्रकार ही के सो घर चलते हैं, यानी कि मतलब चुल्ली पर भी के सो खाना बनता है और वाकई में बड़ा अच्छा खाना के सो बुंदा चुल्ली रहा ना, गैस आने तो बीमारी या गैस पर
2: देखो ना, पहले होता था ना, पहले गाय घर में होती थी और लकड़ियां भी घर में होती थी। अब लकड़ियां भी ऐसे पड़ी हुई है रास्तों में, गाय भी ऐसे बैठी है रोडों पे, तभी ये हाल है वरना ऐसे पैसे ऐसे कभी नहीं हुआ। आप हम जिस टाइम से निकले हैं हमने भी देखा है कि मतलब लकड़ियां बहुत काम की चीज होती थी। अब आप सड़कों पे देखो गायें ऐसे बैठी हुई है, इतने तो बोलते हैं ना इसको, जैसे बोलते हैं ना कि कलयुग लगा हुआ अब तो।
0: हाँ बिल्कुल, कलयुग बिल्कुल लग रहा और ये सब हेरे कर ये भी लगो करता। और भी बहुत सारी रीना जी ऐसी वारदात के अंसो रोजाना बुंदी ही ना तो है, सोशल मीडिया यूज़ कर दें तो है हिरदे बुनन की करखा, मतलब चोरी बच्चू कर दे या करखा सारे आम कत्ल बच्चू कर दें, गोली मारी चू कर दें।
2: एक्चुअली पता है कि आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमारे हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं होता था पहले।
0: हाँ 101 प्रतिशत ना बंदा था बिल्कुल।
2: अब आप मतलब 100% से 99% देखो आपको हर तरफ की न्यूज मिल जाएगी, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आपको कहीं कहीं तक कोई न्यूज मिलती नहीं थी और इतने हादसे भी नहीं होते थे लड़कियों के साथ ना ही किसी के साथ।
0: बिल्कुल, सिर्फ ये जो न्यूज बुंदी थी ये सिर्फ मतलब ये होने जो मूलदा थो दिल्ली या बॉम्बे
2: में चलती थी ज्यादा।
0: हाँ बिल्कुल,
2: हमारे नाना दादा के टाइम में ना तो वो बैठे रहते थे एफएम लेके।
0: हाँ जी
2: हाँ, और अब आप देखो कि मोबाइल ने वो ले ली जगह, तो फिर उसकी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पेट्रोल की भी मौसम देख लो, आप मौसम में इतनी गर्मी देख लो।
0: हालांकि धर्मशाला रे अंगल करो तो आज तो मैं भी 5-7 साल 10 साल पहले की सो पंखे लगाने की जरूरत ना बुंदे थे,
2: अब यहाँ पे एसी लगाने की जरूरत पड़ गई है। और रही राजनीति की बात, तो राजनीति में चाहे कोई भी जीते, चाहे वो पंचायत एरिया का हो चाहे कहीं का भी हो, वो करेगा तो कोई भी हो, लेकिन वो करेगा सिर्फ अपने लिए ही। अच्छा। लोगों के लिए तो, मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो वो लोग दिखावा करते हैं। ये ऐसे मत सोचना है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे इस चीज में पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं वोट नहीं देती हूँ।
0: अच्छा, वोट नहीं देते?
2: मैं नहीं देती हूँ वोट, तो ये बात
0: क्या
2: है कि
0: कारण है किसी वोट ना देने रहा
2: को, वो एक्चुअली ये कि मेरे को ना मतलब बचपन से ही जैसे ना मैंने देखा हुआ कुछ ऐसा कि जिसकी वजह अच्छा। से मुझे ना ये इस चीज से बहुत नफरत है।
0: नफरत, चलिए कुछ कोइंसिडेंस ऐसा चूरा कि तू है वोट पाने थो मतलब नफरत कर देना,
2: वो तो उस टाइम की बात है, अभी ऐसे थोड़ा बोली जा सकती है, लेकिन फिर भी मतलब मैंने तो आज तक वोट नहीं डाला।
0: चलिए ये मत बोला कर, क्योंकि तो है अपने पार्लर का ना भी ले हुआ ना।
2: कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: हाँ पर चलिए,
2: क्योंकि हम तो देखो भगवान के बनाए इंसान है।
0: जी जी जी बिल्कुल,
2: तो
0: चलिए जी, बड़ी फ्रूटफुल गल्ला के अंश तो है आज कनेन इवन की तो है बड़े दिन तो बड़े महीने तो आज तक बड़े साल तो है जुड़ रहे हैं, लेकिन आज तो है जो फ्रूटफुल गल्ला सभी श्रोता सामने कनेई हिन बल्ली हिन वाकई में बड़ी कमाल ने और अप्रिशिएट करनू तुस और श्रोता जो भी हैं बोलना चाहता कि इस प्रकार री जो गल्ला बुंदी सो है चाहते हैं कि अक्की दुए हो गिन ताकि असो संवाद बुंदा रहे और एक गल्ला के अंशो सभी तक पूजी गान है ना। चलिए जी रीना जी और कुछ बोलना चाहते बोल तो है
2: नहीं, आज के लिए तो इतना ही काफी है, जिस टॉपिक पे तो आपने बात करी थी उसके लिए तो इतना ही।
0: चलिए बहुत धन्यवाद जी, कुंदन गीत सुनना पसंद कर ले।
2: कोई भी शिव जी भगवान का सुना देना अच्छा सा।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, धन्यवाद।
2: ओके जी।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और समय रहा थोड़ा करिए अभाव है श्रोतो आइए सीधा लेकर चलते तू सब बीच हो और हुन दिन फरमाइशरा दौर कर दिन पूरा।

ब्यूटी पार्लर रीना छी री फरमाइशा भोले शंकर जी रा कोई भी गीत किया सो हुणना इया ता आइया हुणन दे नियो मिनट दुई बचिन आऊं ले लेनो फिलहाल इजाजत तुसु सब भी थों शोतों और हंस दे रहे मुस्कुरन दे रहे माँ बाप री सेवा हमेशा कर दे रहे और प्यार दोस्ती की आसो हमेशा बरकरार रखा शो तो है ना जी कुछ कुछ जिंदगी में प्यार भी बड़े काम मिलता और दोस्ती की आसो भी बड़े काम मिलते सो इन चीज़ जरा बखूबी ध्यान रखा हूँ सचिन कपूर इन शब्द तो ले लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। एनटीए प्रमुख जोशी तलब कोचिंग संस्थापक गिरफ्तार। विद्यार्थियों के लिए अब 75% उपस्थिति अनिवार्य। हिमाचल बनेगा देश का पहला पोषण नीति वाला राज्य। 31 मई तक नीति तैयार करने के निर्देश। देश की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर आ गई सामने। नशा मुक्त स्वस्थ राज्य बनेगी देवभूमि। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर स्थित एक कोचिंग सेंटर के संस्थापक को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रेणुकाई केमिस्ट्री सेंटर के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को रविवार शाम गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि सीबीआई ने मोटेगांवकर के आवास की तलाशी ली थी और उस दौरान मेडिकल प्रवेश परीक्षा का लीक हुआ प्रश्न पत्र उनके मोबाइल फोन से मिला। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हर कक्षा में न्यूनतम 75% शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। ये नियम थ्योरी कक्षाओं और प्रैक्टिकल सत्र दोनों पर अलग अलग लागू रहेगा। विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। जो विद्यार्थी निर्धारित 75% उपस्थिति पूरी नहीं करेंगे उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां अलग से पोषण नीति लागू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में व्यापक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कहा गया कि 31 मई 2026 तक ये नीति तैयार की जाए। प्रदेश सरकार हिमाचल को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में तीव्रता से कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। सोमवार को तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दरमानी ने कहा कि युवाओं के नवाचार हुनर और नवोद्यम सोच को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक नई योजनाओं पर कार्य कर रही है। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर सामने आ गई है। रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर देश की पहली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की तस्वीर प्रदर्शित की गई, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति का ध्यान खींच रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उनका कहना है कि प्रदेश के 47 नगर निकायों में हुए चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों में विजय हासिल कर ये साबित कर दिया है कि जनता का कांग्रेस सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर पूरा विश्वास है। भारत अमरीकी प्रतिबंधों की छूट के बावजूद रूसी तेल खरीद रहा है। ये बात पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने सोमवार को कहा। उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि रूस पर अमेरिकी छूट के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हम पहले भी रूस से खरीद रहे थे, छूट से पहले भी, छूट के दौरान भी और अब भी। उनका कहना है कि हमारे लिए खरीदने का फैसला पूरी तरह व्यावसायिक समझ पर आधारित है। कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त कच्चा तेल बार बार बुक किया गया है। हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त और स्वस्थ राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार और शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 14 जून तक तंबाकू मुक्त होने का वैधानिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के बाद शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के तहत सितंबर में आयोजित होने वाली 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश फॉर्म जमा करने की तिथियों में संशोधन किया है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि ये संशोधित शेड्यूल फ्रेश एडमिशन TOC के साथ प्रवेश, अतिरिक्त विषय तथा विषयांक सुधार परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लागू रहेगा।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के सत्र 2025 से 26 के पांचवी और आठवीं कक्षाओं के रोके गए परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं की प्रश्न पत्रों को लेकर अधिसूचना जारी की है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने प्रदेश के समस्त प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री तथा ई फार्मेसी के बढ़ते चलन के खिलाफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने 20 मई को देश भर में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। ऑनलाइन फार्मेसियों के अनियंत्रित संचालन और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा दवाओं पर दी जा रही भारी छूट के खिलाफ देश के लगभग 12 लाख से अधिक केमिस्ट और वितरक सड़कों पर उतरेंगे। इस देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के दवा विक्रेताओं ने भी अपनी दुकानें पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। सीए वालों के लिए बड़ा अपडेट है, बहुत जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई में बदलाव हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीए के सिलेबस में बदलाव करने की तैयारी करने जा रहा है। स्टूडेंट्स जी सीए का कोर्स करेंगे, उन्हें आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, ESG और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर हैं। स्वीडन से दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री सोर और स्कैंडिनेवियाई देश के अन्य शीर्ष नेताओं ने स्वागत किया। ये पीएम मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है और 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की भी इस देश की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहे स्टोर के बीच सोमवार को ओस्लो में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रदेश के 157 CBSE स्कूलों को जून के अंत तक 8000 शिक्षक मिलेंगे। इस बीच इतने शिक्षकों को किस स्कूल में भेजा जाएगा, इस पर जरूर माथापच्ची हो गई है। 6000 CBSE शिक्षक और 2000 जॉब ट्रेनी शिक्षकों को नियुक्ति दी जानी है। विभागीय जानकारी के अनुसार राज्य चयन आयोग द्वारा भर्ती किए जाने वाले 2000 शिक्षकों की नियुक्ति पूरे फॉर्मूले के तहत होगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छठी कक्षा से ही बच्चे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस आधुनिक तकनीक को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। एलायंस एयर ने हिमाचल आने जाने वाले यात्रियों को राहत देते हुए शिमला रूट पर डायनेमिक प्राइसिंग व्यवस्था खत्म कर दी है। अब दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली, शिमला से धर्मशाला और धर्मशाला से शिमला रूट पर टिकट का किराया बुकिंग के समय अनुसार नहीं बदलेगा। यात्री चाहे 6 माह पहले टिकट बुक कराएं या उड़ान से एक दिन पहले, उन्हें एक समान किराया ही देना होगा। अब तक एयरलाइंस में डायनेमिक प्राइसिंग लागू होने के कारण अंतिम समय में टिकट बुक कराने पर यात्रियों को कई गुना अधिक किराया चुकाना पड़ता था। प्रदेश को टीबी रोग मुक्त बनाने के लिए उच्च जोखिम के आधार पर चयनित क्षेत्रों में 31,71,916 आबादी की स्क्रीनिंग की होगी। केंद्रीय सरकार ने मधुमेह, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप व 32 अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर गांव का चयन किया गया है। इन गांवों में 14 वर्ष से अधिक आयु की आबादी की जांच की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में घर द्वार क्षय रोगियों की पहचान करेगी। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों से मरीजों के सैंपल ड्रोन के माध्यम से अब मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों तक पहुंचाए जाएंगे। जांच के बाद रिपोर्ट संबंधित स्वास्थ्य केंद्र को ऑनलाइन भेजी जाएगी। अब एक नजर डालते हैं मौसम पे। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से लगातार मौसम साफ रहने से तापमान चढ़ने लगा है। मौसम में आए बदलाव से मैदानी जिलों के साथ पहाड़ भी तप रहे हैं। अधिकतम तापमान में हुई बढ़ोतरी के साथ अब रात का पारा भी चढ़ गया है। सोमवार को ऊना और देहरा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास दर्ज हुआ। 21 और 22 मई को प्रदेश के कई क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अंधड़ का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमेशा कहता हूँ श्रोताओं में कि खुश रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, सेहतमंद है। अगर आप सेहत को अच्छा और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो खुश भी रहिए करो। खुश रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है श्रोताओं लाइफ में, है ना। हंसते रहा करो, मजाक किया करो, और जिससे बात करना अच्छा लगता है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, उसे ज़रूर किया करो। बहरहाल मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर हाजिर हुआ हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में। इस समय धर्मशाला जो है वो मोस्टली जो है वो सनी वेदर है, मोस्टली जो है वो धर्मशाला तप रहा है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस समय जो है वो धर्मशाला वाकई में ही तप रहा है श्रोताओं। और ये हालाँकि पिछले 2-4 दिनों से जो है वो काफ़ी तपने लगा है धर्मशाला का मौसम, है ना। लेकिन इससे पहले जो था वो मतलब ठंडा मौसम जो था वो चल रहा था श्रोतों, तो अभी फ़िलहाल तो तप रहा है। और इस तपती गर्मी में क्या आप सभी समझ पा रहे हैं कि क्या धर्मशाला का मौसम होगा? जो बाहर रह रहे हैं, यहाँ जो रह रहे हैं उनको तो पता ही है कि क्या है। तो अभी करंट टेम्परेचर की मैं बात करूं श्रोताओं तो वो कहीं ना कहीं 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और द डे टाइम बहुत हाई, मतलब डे टाइम में थोड़ा हाई जो है वो चल जा रहा है, 25-26 के करीब जो है वो रह रहा है। और नाइट में जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रह रहा है श्रोताओं, है ना। तो ये तो है धर्मशाला का इस समय का टेम्परेचर। तो चलिए कार्यक्रम आप सभी सचिन कपूर के साथ जो है वो सुन रहे हैं और आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ। और फिर आगाज़ के बाद आप सभी को जो है वो जानकारी हम ज़रूर पहुंचाएंगे। बने रहिए।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं जुड़े हुए हैं। बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना श्रोतों, आइए तो लेके चलें आप सभी को श्रोतों आज के इस विचार की ओर, खूबसूरत विचार की ओर। कहते हैं जीवन को जीवन में जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा होनी चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा से जो है वो जीवन भरा होना चाहिए। सही दिशा दिखाने के लिए जो है वो बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन बुरी दिशा दिखाने के लिए जो है श्रोताओं वो बहुत ज़्यादा लोग हमें मिल जाते हैं। देखिए, सफलता कभी आपके मूड को, आपकी मूड की जो है वो मोहताज नहीं होती है। सफलता कभी भी आपके मूड की मोहताज नहीं होती है, वह केवल आपके कड़े अनुशासन की दीवानी होती है। जीत और हार आपकी खुद की सोच पर भी कभी न कभी निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। सफलता आपको तब मिलती है जब आप प्रतिदिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने की चुनौती देते हैं श्रोतों, तभी आपको सफलता मिलती है, तभी जो है वो आपके कदम सफलता की ओर बढ़ते हैं श्रोतों। जीवन में धैर्य का होना बेहद ज़रूरी है, जीवन में जो है वो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है श्रोतों। विद इन सेकेंड रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जीवन में धैर्य का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। मानसिक शांति भी बहुत ज़रूरी है जीवन में और व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है श्रोतों। जीवन में अपनी ज़िंदगी में हर दिन किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की एक छोटी सी वजह जो है वो आप सभी भी ज़रूर बन सकते हैं श्रोतों। व्यवहार में केवल उतनी ही विनम्र बनो जितना ज़रूरी है, क्योंकि अत्यधिक झुकने वाले लोगों को कमज़ोर समझा जाता है ना। तो ज़िंदगी में धैर्य बहुत ज़रूरी है, व्यवहार में विनम्रता बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी में आप ऐसी कोशिश ज़रूर करेगी, कोई ना कोई आप की वजह से ज़रूर मुस्कुराए, है ना। तो चलिए, फ़िलहाल आप सभी बने हुए हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ और आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं, गीत संगीत का पिटारा भी जो है वो यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आप सभी को सुनाएंगे हम ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी। गुड इवनिंग धर्मशाला, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। आप भी कभी न कभी किसी न किसी के जो है वो ज़रूर हुए होंगे। चलिए जी, तो प्राइवेट स्कूल बसों में ओवरलोडिंग पर कसेगा बस शिकंजा। ज़िला में निजी स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। उपनिदेशक शिक्षा कांगड़ा अजय संब्याल ने ज़िला के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्कूल वाहन निर्धारित नियमों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही सड़कों पर संचालित किए जाएँ। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना पर पाए जाने पर जो है वो संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जारी निर्देश के अनुसार सभी स्कूल बसों और अन्य वाहनों के दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए, साथ ही वाहन चालक और परिचालक के लिए निर्धारित वर्दी पहनना भी अनिवार्य किया गया है। विभाग ने स्कूल वाहनों में ओवरलोडिंग से बचने के निर्देश दिए हैं तथा प्रत्येक बस में डस्टबिन रखने को भी ज़रूरी बताया है। आदेश में ये भी स्पष्ट किया है कि ये इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रमुख की होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अक्सर देखने में मिलता है कि निजी स्कूल के वाहनों में बच्चों को वाहन की क्षमता से अधिक संख्या में बिठाया जाता है। इसके अलावा वाहनों में डस्टबिन की सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण वाहन व सवार बच्चे कूड़ा कचरा खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी की समस्या को बढ़ावा मिलता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए उपनिदेशक द्वारा सभी निजी स्कूलों के प्रमुखों की उक्त निर्देश जारी किए गए हैं। श्रोतों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। श्रोतों, जानकारियों का पिटारा यूं ही खोलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए, 6:30 हुए हैं, 31 हो गए हैं और अब वक्त हो गया है श्रोतों एक छोटे से अंतराल का।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

शोध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेली गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ आप सभी सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी की ओर आप सभी को लेके चलते हैं। श्रोतों, पुलिस ने चिट्टे तस्करी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। केस दर्ज कर पुलिस ने जाँच तेज कर दी है। श्रोतों, इस मामले में ASP नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि 15 मई 2026 को जो है वो भद्रोया में जो है वो पकड़ी गई है। 41.40 ग्राम चिट्टे के मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस ज़िला नूरपुर को एक और सफलता जो है वो मिली है। शोधम पुलिस ने जो है वो इस तरह के नशीले स्रोतों का जो है पता लगाकर इस मामले से जुड़े एक और आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी मनमोहन सिंह उर्फ बीरू निवासी जो है वो भद्रोया तहसील इंदौरा का रहने वाला है। NDPS अधिनियम की धारा 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 15 मई को CI टीम नूरपुर ने भद्रोया में एक घर से जो है वो सिलाई मशीन के नीचे छिपाई गई 41.40 ग्राम हीरोइन बरामद की थी। इसमें मां बेटा को गिरफ्तार किया गया था। श्रोताओं, इसी मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए इस आरोपी को दबोचा गया है। ASP नूरपुर ने बताया कि नशे के नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है वो हिमाचल पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम में गीत संगीत का सिलसिला जो है वो भी यूं ही चलता रहेगा। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? होप से उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल समेत पूरे देश के लिए आपदा राहत में बदलाव होने जा रहा है। अब आपदा के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु पर पीड़ितों को 4 लाख की जगह 10 लाख रुपए मिलेंगे। हिमाचल में क्योंकि सड़क हादसा भी आपदा में जो है वो सूचीबद्ध है, इसलिए सड़क हादसे में मौत की सूरत में भी 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसी तरह घर के टूटने पर 1.30 लाख रुपए नहीं बल्कि 4.30 लाख रुपए मिलेंगे। घरों को जो है वो नुकसान पर राहत राशि को 6500 रुपये से बढ़कर 1.12 लाख किया जा रहा है श्रोताओं। इसी तरह गाय या भैंस की हानि होने पर मालिकों को

39,000 की जगह 73,000 रुपया मिलेंगे। इस प्रस्तावित रिलीफ मैनुअल पर राज्य के साथ चर्चा लगभग पूरी हो गई है, सभी राज्यों के साथ जो है वो चर्चा लगभग जो है वो श्रोताओं पूरी हो चुकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन ने हिमाचल के सुझाव भी ऑनलाइन बैठक में लिए थे। अब इन सुझावों पर विचार के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय संशोधन रिलीफ गाइडलाइंस को लागू करेगा। देश में आपदा राहत और पुनर्वास व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए आपदा राहत मैनुअल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस संबंध में प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों के साथ कई दौर की बैठकें कर सुझाव लिए हैं। सूत्रों के अनुसार नए मैनुअल में राहत मुआवजों की राशि बढ़ाने या आपदा के बाद जो है वो सहायता वितरण नुकसान के आकलन की प्रक्रिया को सरल बनाने और नई तरह की आपदाओं को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। श्रोतों, तो आपदा में मौत पर अब मिलेंगे 10,00,000 रुपए। केंद्र सरकार बदलने जा रही है राहत पैकेज। सड़क हादसे में मौत पर भी जो है वो 10,00,000 मदद हो सकती है। श्रोतों, घर गिरने पर 1.30 लाख नहीं 4.30 लाख की राशि दी जाएगी। श्रोतों, तो जानकारियाँ यूं ही चलती रहेंगी। जानकारियों का पिटारा जो है श्रोतों वो यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतो और लेके चलते हैं आप सभी को इस जानकारी की ओर। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मैं बात करने जा रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के बीच चेन्नई में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएससी की रीजनल हब पहुँचे। यहाँ उन्होंने सब मशीन गन, छोटी मशीन गन चलाई, साथ ही पिस्टल से भी निशाना लगाया। 44 साल के धोनी ने यहाँ कमांडोज और उनके परिवार के साथ समय बिताया, उनके साथ खाना खाया। इस दौरान उन्होंने कमांडोज से पूछा कि फिट लग रहा हूँ ना। इस पर जवानों ने सहमति देते हुए कहा कि पिछली बार जब आए थे तब इससे भी फिट थे। बता दें कि MS धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जिसको TA कहते हैं श्रोतों। वह पैराशूट रेजिमेंट की 106 पैरा टेरिटोरियल आर्मी बटालियन का हिस्सा हैं। उन्होंने कश्मीर में भारतीय सेना के साथ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी की थी। बाद में उनका बूट पॉलिश करते हुए फ़ोटो भी सामने आया था श्रोतों। तो MS धोनी वाकई में ही बाकमाल इंसान है, बहुत कमाल है। भारत के लिए उन्होंने बहुत सी ट्रॉफियां जो हैं जब वो कप्तान थे तब लेके आए हैं। और ये श्रोतों मुझे लगता है कि फेमस होना जो है वो बहुत टास्क जो है वो बड़ा टफ रहता है, टफ टास्क जो है वो रहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अगर आप फेमस हो जाते हैं तो फिर आपके पास सब कुछ है, फिर आपको हर कोई जानता है और हर कोई आपकी बात को जो है वो भली भांति मानता भी है श्रोतों। तो चलिए फिलहाल हम आपको लेके जाएंगे इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा वीडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

0: शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और वेड़ी गुंजन धर्मशाला में कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। वक्त हुआ है श्रोतों कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का, माफ करें, अब वक्त हो चुका है समाचार का। तो आइए सुनते हैं, 7 बज चुके हैं वेड़ी गुंजन पर समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल 1 दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पांचवें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोता FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वीडियो जो कि सचिन कपूर। हाँ जी बिल्कुल, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला हम सभी जो है वो इस समय सुन रहे हैं। तो आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में श्रोता हूँ अब आपको लेके चलते हैं इस जानकारी की ओर। श्रोता, हिमाचल प्रदेश में तपने लगे अब पहाड़, निचले क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं सूर्यदेव जी काफ़ी तप रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। निचले क्षेत्र के साथ साथ अब पहाड़ भी जो है वो तपने शुरू हो गए हैं श्रोतों। शिमला सहित सभी ज़िलों में गर्मी से लोगों का जीना जो है वो कहीं ना कहीं दुश्वार होते जा रहा है। मौसम में आए बदलाव से मैदानी ज़िलों के साथ साथ पहाड़ों में पसीना छूट रहा है। अधिकतम तापमान में हुई बढ़ोतरी के साथ अब रात का पारा भी जो है वो चढ़ गया है श्रोतों। रविवार की बात मैं करूँ तो अधिकतम तापमान देहरा गोपीपुर में जो है वो अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 गुना जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 से 24 मई के दौरान राज्य के कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। 19 तो आज हो चुकी हैं, 20, 23 और 24 मई को राज्य के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। 21 को ऊंचे और मध्य पर्वतीय, 22 मई को जो है वो कुछ मैदानी भागों में भी बारिश हो सकती है श्रोतों। तो अधिकतम तापमान हमेशा ऊना का हम आपको बताते हैं इस समय लगभग 40 डिग्री के आसपास रह रहा है अधिकतम तापमान ऊना का, और धर्मशाला का 33.1 डिग्री के आसपास जो है वो अधिकतम तापमान रह रहा है श्रोतों। यह जानकारी जो हमने आपसे शेयर की, हमने आपसे साझा की, तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारी सी

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतो कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम सभी। तो देखिए चिट्टा तस्करी के केस जो है वो आरोपी अरेस्ट हो रहे हैं लगातार जो है वो, बेशक पूरे हिमाचल की मैं बात करना चाहता हूँ, लगातार केसेस भी जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार इन पर नज़र भी जो है वो बनाए रखी हुई है, दौड़ाए रखी हुई है। श्रोतों इसी के साथ कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जीत के बाद शाहपुर को जो है वो बड़ा तोहफा। जी बिल्कुल श्रोतों, शहर में 10 करोड़ से बनेगा इंडोरा स्पोर्ट्स और शॉपिंग मॉल। जी बिल्कुल, नगर पंचायत शाहपुर के चुनावों में कांग्रेस 5 पार्षदों की शानदार जीत के तुरंत बाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने स्थानीय जनता को विकास का एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है। चुनाव परिणामों के अगले ही दिन जो है वो विधायक केवल सिंह पठानिया ने शिमला पहुंचकर जो है वो अर्बन डेवलपमेंट विभाग, शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में शाहपुर नगर पंचायत के आधुनिकीकरण और विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि से बनने वाले इंडोरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। विधायक केवल सिंह पठानिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शाहपुर की जनता को समर्पित ये प्रोजेक्ट विधानसभा क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। शाहपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आधुनिक इंडोरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के माध्यम से स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं और ट्रेनिंग ग्राउंड मिलेगा। श्रोताओं, ये कॉम्प्लेक्स युवाओं को नशे से दूर रखकर राज्य और राष्ट्र स्तर पर चमकने के लिए तैयार करेगा। ऐसे में युवाओं के सपने अवश्य साकार होंगे। ये बड़ा कदम इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यावसायिक मॉडल है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर ही एक आधुनिक शॉपिंग मॉल और 50 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय छोटे और मध्यम कारोबारियों को व्यापार के नए और आधुनिक विकल्प मिलेंगे, विकास की बुनियाद बनेगी। श्रोताओं चलिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं जानकारी यूं ही चलती रहेंगी, गीत संगीत यूं ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी है। जो कि श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और क्या आपको पता है श्रोताओं कि रात को लेट सोना आपको बूढ़ा बना रहा है? जी बिल्कुल श्रोताओं, मैं आप सभी को इस बात से रूबरू करवाना चाहता हूँ, आपको जवान बनाए, आपको खुद को जवान बनाए रखना है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगी। दिमाग को तेज बनाता है या याददाश्त को तेज बनाता है श्रोताओं, सही टाइम पर जो है वो सोना और अपने दिमाग को जो है वो रेस्ट देना। पूरे दिन की थकावट होती है, आप सभी जानते हैं कि पूरा दिन इंसान 8 से 9 घंटा जो है आवर्स जो है वो वर्किंग रहता है, कोई 9 से 10, कोई 10 से 12, अपने अपने ड्यूटीज़ टाइम है, तो हर कोई जो है वो थक जाता है, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है। तो उसके लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो आवर्स की नींद जो है वो पूरी ज़रूर करनी है श्रोताओं, वो भरपूर पूरी करनी है आप सभी को। इस बात का खास ख्याल जो है वो ज़रूर रखें आप सभी। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, और गीत के बाद फिर वक्त होगा 7:30 पर अंतराल का।

हर्षो तो वाकई में ना जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा भी। आप सभी श्रोताओं का बिल्कुल हमें साथ हमेशा चाहिए। श्रोताओं आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वीडी गुंजन धर्मशाला के साथ। और आइए, वक्त हो गया है वीडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-1811-170-91। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
10: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बी ए एम ए की डिग्रिया है सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आरजे सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेड़ी गुंजन धर्मशाला के इस कार्यक्रम में। गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। और स्मार्ट सिटी की सड़क या फिर हादसे का रास्ता, हादसों का रास्ता। धर्मशाला के जौहर नगर क्षेत्र में पिंगल नाला के समीप स्थित कैंची मोड़ की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। श्रोताओं, कुछ ही हफ्ते पहले इस मुख्य सड़क पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पैचवर्क किया गया था, लेकिन अब सड़क दोबारा उखड़ चुकी है। सड़क के बीच बने गड्ढे, किनारे खुली नाली और टूटी पैरापिट के कारण ये मोड़ जो है वो हादसों को खुला न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। श्रोताओं, स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला की मुख्य सड़क की ऐसी बदहाल स्थिति प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। ये मोड़ पहले से ही बहुत कंजस्टेड और तीव्र घुमाव वाला है। ऊपर से सड़क किनारे पैरापिट इस मोड़ पर ही नहीं, जिससे वाहन चालकों में हर समय दुर्घटना का डर जो है श्रोताओं वो बना रहता है। खासकर रात के समय यहाँ से गुजरना बेहद जोखिम भरा जो है वो हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वाहन चालक यहाँ संतुलन खोते खोते बचे हैं श्रोताओं। बड़े वाहनों इस मोड़ पर जो है वो हिचकोले खाते हुए जो है वो गुजर रहे हैं, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को हर समय दुर्घटना का खतरा जो है वो बना हुआ है। लोगों ने बताया कि हाल ही में हुए IPL मैचों के दौरान इस सड़क पर दिन रात वाहनों की लंबी कतारें लगी रही हैं। कई वाहन सड़क किनारे पार्क किए गए हैं, जिससे इस सड़क पर अतिरिक्त दबाव भी रहा है। IPL के तीनों मुकाबले समाप्त होते ही अब सड़क की असली स्थिति सामने आने लगी है। कुछ सप्ताह पहले अब पूरी तरह से उखड़ने लगे हैं श्रोताओं, जिससे लोगों में विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। स्को के रहने वाले बहुत सारे लोगों ने जो है वो शिकायत भी की है और स्को के रहने वाले लोगों की हर दिन इस रास्ते से वाहन लेकर निकलते हैं और उनके लिए खतरा भी है। कहना है उनका कि सड़क मरम्मत कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। यदि समय रहते यहां मजबूत पैरापिट, गुणवत्तापूर्ण सड़क मरम्मत, चेतावनी बोर्ड और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले समय में यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से जल्दी स्थायी समाधान की मांग भी उठाई है। तो चलिए श्रोताओं, आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ और अब से ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें और बने रहिएगा आपके अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

उत्थान के लिए सरकार चला रही है अनेक योजनाएं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी। 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान।

0: नगर निकाय चुनाव नतीजों पर राजनीति जारी। जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर लगाया बढ़ा चढ़ाकर जीत के दावे पेश करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस। और सुप्रीम कोर्ट का लावारिस कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त बनेंगी तो पूरा परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान सामग्री प्रबंधन और मतदान केंद्रों पर पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही चुनाव कर्मियों को मतपेटी के उपयोग और चुनाव प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव परिणामों की वास्तविक स्थिति जिला परिषदों और पंचायतों के निर्वाचन के साथ ही स्पष्ट होगी। जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा शहरी निकाय चुनाव नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जो सही नहीं है, क्योंकि अभी इन संस्थाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं का बयानबाजी में कोई मुकाबला नहीं है और वे हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है।
1: नगर निगम के जो हमारे नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस समर्पित लोगों की तादाद बढ़ी है। अभी समय है, गठन होने दो, नगर परिषदों को गठन होने दो, स्पष्ट हो जाएगा कहां कहां के अध्यक्ष कौन बनाता है, क्योंकि अभी पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव होने हैं, उसको प्रभावित करने के लिए ये लोगों को गुमराह कर रही है, जब हकीकत और है। इसमें जो चुनाव हुए अभी, जिनके रिजल्ट निकले हैं, चाहे परिषद के है चाहे हमारे नगर पंचायतों की है, उसमें कांग्रेस के भारी तादाद में लोग जीते हैं।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शंकर देहरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विदाई की शहनाई बजा दी है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के बाद अब प्रदेश की ग्रामीण जनता भी कांग्रेस की चुनावी गारंटियों के पूरा न होने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और पंचायत चुनावों में सरकार को कड़ा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि भाजपा नेता चुनाव नतीजों को लेकर झूठे दावे पेश कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत ने साबित कर दिया कि प्रदेश के लोग पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने 47 नगर निकायों में से 32 में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस इससे भी अधिक निकायों में अपने अध्यक्ष बनाएगी। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने से भारत की विश्व में साख व कूटनीति और मजबूत हुई है। प्रोफेसर सुकेंद्र कुमार ने कहा कि ये केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते वैश्विक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति रक्षात्मक से आक्रामक और आत्मनिर्भर मोड में बदल गई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत पुडुचेरी और हिमाचल के बीच सांस्कृतिक व शैक्षणिक आदान प्रदान की नई शुरुआत हुई है। इसके तहत एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और 5 फैकल्टी समन्वयकों का एक दल आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शैक्षणिक भ्रमण नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव और अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देना है।
2: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का शिक्षा के बारे में और आपस में परस्पर आदान प्रदान हो उसके लिए ये पहल रहती है कि कोई भी दो स्टेट्स का पेयर बनाया जाए और वहाँ के बच्चे आपस में एक दूसरे की स्टेट में जाएं और वहाँ पर जाकर के उसके बारे में अपने रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट वो शेयर करते हैं। तो इसी के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय को इस वर्ष पुडुचेरी के साथ, जिसकी मेजबानी एनआईटी पुडुचेरी कर रही है, और हिमाचल के साथ 48 बच्चे एनआईटी पुडुचेरी से आज यहां पहुंच चुके हैं।
0: हिमाचल प्रदेश मिडडे मील वर्कर यूनियन और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आंगनवाड़ी हेल्पर और मिडडे मील वर्करों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियों के लिए खाना बनाने के लिए लगाने का विरोध किया है। मिडडे मील वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार और सचिव शांति ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को वेतन मिलता है, लेकिन मिडडे मील वर्करों को इस कार्य का कोई वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पंचायत चुनावों में मिडडे मील वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों व हेल्परों की ड्यूटी न लगाई जाए। प्रदेश विधानसभा सचिवालय में बीते रोज और आज लोक लेखा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों की अध्यक्षता सभापति अनिल शर्मा ने की। बैठकों में विधायक रणधीर शर्मा, संजय रतन, जीतराम कटवाल, बलेंद्र राजन, केवल सिंह पठानिया और चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में समिति ने लोक निर्माण व उद्योग विभाग से संबंधित प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार विमर्श किया। प्रदेश में तापमान में वृद्धि लगातार जारी है। तापमान बढ़ने से राज्य के मैदानी जिलों में लोगों को जोरदार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और किन्नौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच विभाग ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आज से 25 मई तक राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद है। विभाग ने 21 और 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने, अंधड़ और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश पर्यटक स्थलों पर इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है और भारी संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सरकार चला रही है अनेक योजनाएं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी। 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होगा मतदान। नगर निकाय चुनाव नतीजों पर राजनीति जारी। जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर लगाया बढ़ा चढ़ाकर जीत के दावे पेश करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नगर निकाय चुनावों में जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस, और सुप्रीम कोर्ट का लावारिस कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: श्रोता FM 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है, और इसी के साथ मुझे यानी कि RJ सचिन कपूर को दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वेड़ी गुंजन में यूं ही गूंजते रहिए अपने प्यारे प्यारे कार्यक्रमों के साथ। नमस्ते धर्मशाला।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है, और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिट्टू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से ही बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहाँ तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज़ सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है,
14: पता
15: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है, और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया।
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, पुआर लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहाँ तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है,
14: पता
15: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

तो मेगा हर्ट्स पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया।
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं।
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, पुआर लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, पर फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 FM पर ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त मनीषा और हाजिर हो गई हूँ भक्ति संगीत का कार्यक्रम लेकर।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत की आराधना का।